आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज़ आपसे भी धीमा नमस्कार आपको
1: नमस्कार नितुषा सभी सुनने वालों को नमस्कार बजट पेश होने से एक दिन पहले कुगान पापा ने प्रस्ताव दिया है कि उच्च आय वालों पर टैक्स बढ़ाकर ईंधन की कीमतों में ₹5 प्रति लीटर की कटौती की जाए उनका तर्क है कि मौजूदा कर प्रणाली मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों पर भारी पड़ रही है हालांकि आलोचकों का सवाल है कि क्या ऐसा करने से मॉरिशस में विदेशी निवेशकों और पेशेवरों का आकर्षण कम हो सकता है या नहीं बजट को लेकर मॉरिशस में बहस छिड़ी है जहां जूनियर मंत्री कुगान पारापेन सामाजिक न्याय के लिए उच्च वेतन वालों पर टैक्स बढ़ाने का समर्थन कर रहे हैं वहीं पैट्रिक बेल्को इसका विरोध कर रहे हैं बेल्को का तर्क है कि कर बढ़ाने से ये लोग देश से बाहर जा सकते हैं इसके विकल्प के रूप में उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि अमीरों को करों में छूट दी जाए यदि वे उस राशि को सामाजिक आवास परियोजनाओं में निवेश करें बजट पेश होने से ठीक पहले जनरल वर्कर्स फेडरेशन के वार्ताकार अश्विन गुदे ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ हुई पूर्व बजट चर्चाओं के महत्व पर जोर दिया है उनका मानना है कि पिछली बजट घोषणाएं विफल रही हैं इसलिए अब अर्थव्यवस्था को सुधारने और सही दिशा में ले जाने के लिए नए और ठोस कदमों की आवश्यकता है चीनी उद्योग का लक्ष्य 2029 तक उत्पादन बढ़ाकर 2,50,000 टन करना है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एमसीआई ने ₹210 मिलियन के तत्काल निवेश की मांग की है ताकि सेक्टर की उत्पादकता को सही समय पर बढ़ावा दिया जा सके जलाशयों के गिरते स्तर के कारण वाकाक्यू

0: पिपरमुक सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति सीमित कर दी गई है। अब निवासियों को दिन में केवल 5 से 6 घंटे ही पानी मिल रहा है। इस स्थिति के बीच लोग नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने और भविष्य की संभावित लंबी कटौती के लिए तैयारी करने में जुट गए हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक अंतरिम समझौता हुआ है। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलेगा, जिसके बदले उसे बिना किसी रोक टोक के तेल निर्यात करने की अनुमति मिलेगी। और आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। जो बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा था वो उत्तर पश्चिम की ओर दूर होता जा रहा है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्व और सेंट्रल बातों पर आज सुबह कुछ हल्की बारिश के बाद मौसम सुहाना रहेगा। फिर भी दोपहर बाद को उत्तर पश्चिम में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25, तटवर्ती इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात को आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। आज सुबह और दोपहर बाद को दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपसे मुलाकात होगी 6:30, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: अब आइए जामे मस्जिद पोर्टलुस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रजवी दामर बरकातहुमुल आलिया का ये सबक आमोज़ बयान समाअत करते हैं।
1: नहमदुल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला मुस्तफा व अला आलिही व असहाबिल मुर्तजा अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। هل أتاك حديث الغاشية صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم حمد ثناء کے بعد حاضرین محترم आज हमारा मौजू है क़यामत का दिन एक निहायत हौलनाक दिन है। इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीं फरमा लें कि बिलाशुबा हमारे और तुम्हारे आगे एक ऐसा दिन है जिसमें बूढ़े जिसमें बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी और तू देखेगा लोगों को जैसे नशे में है, वो नशे में ना होंगे मगर ये है कि अल्लाह की मार बड़ी सख्त है, अल्लाह की मार कड़ी है। इस दिन सब छुपी हुई चीज़ें खुल जाएंगी। अल्लाह ताला अपने बंदे से इसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा, सवाल करेगा कि बंदे ये बता कि तूने अपनी ज़िंदगी कहाँ सर्फ की। उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि जवानी को और शबाब को कहाँ सर्फ किया। माल के बारे में पूछा जाएगा, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। अहले वईद के लिए जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद सूरह काफ आयत नंबर 30 से 35 में इसको बहुत तफसील से बयान किया। फरमाया यौमा नकूलु लिजहन्नम हलिम तलती, जिस दिन हम जहन्नम से फरमाएंगे क्या तू भर गई। व तकूलु हल मिन मजीद, वारस करेगी कुछ और ज़्यादा है। وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, और करीब कर दी जाएगी जन्नत परहेजगारों के लिए कि वो उनसे दूर न होगी। हाजा मा तुअदून, ये है वो जिसका तुमसे वादा किया गया, जिसको जिसका तुमको वादे दिए जाते। लिकुल्ले अव्वाबिन हफीज, हर रुजू लाने वाले निगहदाश वाले के लिए। मन खशियर रहमान बिल गईब वजा अबी कल्बी

0: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ.
1: अभी अभी आपने जामे मस्जिद पोटलिस के खतीब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कादरी रज़वी दामर बरकातहुम अलिया का ये बयान सुना। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें इस बयान से इबरत पकड़ने की तौफीक अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं, और फ़र्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया, जो इसकी अजमत को जाहिर करता है। इस महीने में इबादत, ज़िक्र और नफली रोज़ों की ख़ास फजीलत है। मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करे और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश करे।

अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को आशूरा का रोज़ा रखते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा दिन है? उन्होंने कहा, ये बड़ा अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी और फिरौन को गर्क किया, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी रोज़ा रखा और दूसरों को भी हुक्म दिया। आशूरा का दिन अल्लाह ताला की अजीम नियमतों की याद दिलाता है। इस दिन रोज़ा रखना शुक्रगुजारी, इताअत और अंबिया अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन मुसलमानों को 9 या 10 मुहर्रम या फिर 10 और 11 मुहर्रम के रोज़े रखने की तरगीब दी गई है।

94.6 98.2 MHz మీద RM3

કિનારે તો ખાલી પડે નાની નાની પગલી ને નાના એવા સપના ની રે

0: your kind of music all day, all night, right here on your one and only station.
1: भक्ति में शक्ति ताल एफएम पर।
2: सभी श्रोताओं को अनीता का प्रेम सहित नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम सुन रहे हैं जो रेडियो मनोरंजन के माध्यम से प्रसारित हो रहा है। श्रोताओं, आज एक विशेष दिन है। आज हम मना रहे हैं पार्वती जयंती और इस विशेष अवसर पर यह कार्यक्रम पार्वती माता पर आधारित होगा। तो आइए हम सर्वप्रथम एक भजन का आनंद लेते हैं और उसके पश्चात कार्यक्रम को जारी रखेंगे।

भक्तों, पार्वती जयंती हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व माता पार्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माता पार्वती को शक्ति, करुणा, प्रेम और समर्पण की देवी माना जाता है। पार्वती माता भगवान शिव की अर्धांगिनी है और आदर्श पत्नी, माता तथा नारी शक्ति का प्रतीक है।

देवी पार्वती जिन्हें उमा दक्षपुत्री माया गिरिजा सती गौरी हेमवती शीशे के नाम से भी जाना जाता है, वे शक्ति और ममता की प्रतीक हैं जिनके सुंदर स्वरूप को चित्रों और मूर्तियों में दर्शाए गए हैं और जिनमें वे त्रिशूल तलवार माला धारण किए हुए शेर पर सवार हैं। देवी पार्वती को देवी दुर्गा शेरावाली का ही एक रूप माना जाता है, इसलिए हिंदू भक्त उन्हें सर्वोच्च शक्ति सभी की माता अर्थात जगत जननी आदि शक्ति जो सर्व रचयिता है मानते हैं।

प्रियजन, इस दिन श्रद्धालुओं को प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पश्चात वे माता पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें तथा फल फूल अक्षत धूप और दीप अर्पित करें। साथ ही साथ उन्हें शिव पार्वती की कथा सुनना चाहिए अथवा पढ़ना चाहिए और अंततः आरती करके परिवार के सुख एवं कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए।

श्रोतागण, इस दिन भक्त माता पार्वती तथा भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते ही है, साथ ही साथ महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना से माता पार्वती की आराधना करती हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन, धार्मिक अनुष्ठान और कथा श्रवण का आयोजन भी किया जाता है।

प्रियजन, पार्वती जयंती केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं अपितु नारी शक्ति और आदर्श पारिवारिक मूल्यों का उत्सव भी है। माता पार्वती का जीवन हमें धैर्य, त्याग, तपस्या की शिक्षा देता है। उन्होंने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, जो उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण का उदाहरण है।

श्रोताओं, यहाँ पर्व हमें प्रेम, विश्वास और पारिवारिक एकता का महत्व समझाता है। पार्वती जयंती के अवसर पर श्रद्धालु माता पार्वती सुख, शांति, समृद्धि और शक्ति की प्रार्थना करते हैं तथा उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ श्रोताओं, यहाँ कार्यक्रम समाप्त होता है। आपने साथ दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और

空窗，能够发出金色的光。我挥至一方，抬头便会为你守望。一天天催逼生活在现代化，缤纷星空抛低我寄存繁荣。

0: 94.96 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
1: स्टूडियो आगे विधि माउन से मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
2: नमस्कार विकास, सभी सुनने वालों को नमस्कार। कंपटीशन कमीशन मॉरिशस में मुर्गी पालन क्षेत्र का बाजार अध्ययन शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की जांच करना है, जिसमें चिकन और अंडे का उत्पादन और विपणन शामिल है। कमीशन के अनुसार पोल्ट्री उद्योग मॉरिशस की अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है। चिकन देश में सबसे अधिक खपत वाला मांस बना हुआ है और ये आबादी के लिए प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में अब एक दिन से भी कम का समय बचा है। बजट 2026-2027 को एक रिकवरी बजट के रूप में देखा जा रहा है। ये एक ऐसे आर्थिक परिवेश में पेश किया जा रहा है जो अभी भी नाजुक है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संकेत राहत की उम्मीद जगाते हैं, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से। मॉरिशस में सबकी निगाहें सबसे कमजोर वर्ग पर भी टिकी हैं। बजट

0: 2027 की प्रस्तुति से पहले बुजुर्गों की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे समझते हैं कि मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिति अभी भी कठिन है, वहीं अन्य लोग मुख्य रूप से जीवन यापन की बढ़ती लागत का जिक्र करते हैं। महंगाई की मार झेल रहे पेंशनभोगियों की मुख्य प्राथमिकता दैनिक जीवन में राहत और अपनी खरीद शक्ति को बढ़ाना है। बजट से एक दिन पहले कुगानपाहापे ने ईंधन की कीमतों और टैक्स व्यवस्था पर बहस को फिर से हवा दी है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में प्रस्ताव रखा कि पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 5 रुपए की राहत दी जाए, जिसका वित्त पोषण उच्च आय वालों पर अधिक टैक्स लगाकर किया जाए। वहीं ओनावो मोरिस के नेता पैट्रिक बिल्को ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि इससे उच्च आय वाले लोग देश छोड़ सकते हैं। उनका सुझाव है कि अमीरों को कम कर के बदले सामाजिक आवास में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 14 सूत्रीय ज्ञापन के हिस्से के रूप में दोनों पक्ष अगले 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते पर पहुंचने के लिए आगे की बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। समझौते में कहा गया है कि इस आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है इसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना, ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना और ईरान पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त करना शामिल है। और लॉस एंजल्स के बॉयल हाइट्स में स्थित एक बड़ी कोल्ड स्टोरेज की 16 पैनल वाली छत में बुधवार को भीषण आग लग गई। जहरीले धुएं और अमोनिया रिसाव के खतरे को देखते हुए स्थानीय लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। दमकल कर्मियों और विशेषज्ञों की टीम आग बुझाने में काम में जुटी रही, जबकि घटना की जाँच जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती लक्ष्मी देवी रागादू, पैदायशी नाम तुमादू और जो रागिनी नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके पति श्रीवायती लिंगम रागादू के घर पिंक पिजन रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। आयासामी लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा में 58 साल की 58 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुकंती निपुल, पैदाशी नाम अर्जुन और जो बेबी लता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके पति श्री विजय निपुल के घर आयासामी लेन हॉलीवुड नंबर 1 वाकवा से उठाकर थौमा मेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan. Suhana Safar.

घड़ी में ला लीजिए दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज है गुरुवार 18 जून। रेडियो मनोरंजन पर सुहाना सफर इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत हम करते हैं और मैं आ चुकी है आपका साथ देने के लिए। हमारा और आपका साथ रहने वाला है दोपहर के 2 बजे तक। तो बताइए कैसे है आप सभी, ठीक तो है ना? और आज का दिन कैसे बीत रहा है? अभी तो लंच टाइम है तो शायद लंच करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं या फिर घर पर पूरे दिन के काम को समेट कर बस आराम करते करते साथ दे रहे हैं या ड्राइव करते करते जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं से भी साथ दे रहे हैं, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशें हम शामिल करने वाले हैं। थर्सडे के इस सुहाना सफ़र को यादगार बनाएंगे हम और आप मिलके। भूलिएगा नहीं 4028070 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 5250600 पर। थोड़ी देर में हम हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, आपके लाइव डेडिकेशंस हम लेंगे। तो बस साथ दीजिए हमारा ऑन रेडियो मनोरंजन सुमी के साथ दोपहर के 2 बजे तक इन योर सुहाना सफ़र।

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए सुहाना सफ़र का ये जो खूबसूरत कारवा है ये शुरू हो चुका है और यहाँ पर आप भी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और जब आप जुड़ते हैं ना हमारे इस प्रोग्राम में तो हमारे ये प्रोग्राम का जो सफ़र है और भी खूबसूरत और भी हसीन और भी रंगीन हो जाता है। तो चलिए खूबसूरत गानों का ये जो सिलसिला है, खासकर पुराने गानों का ये जो कारवा है, इसे हम आगे ले जाते हैं और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम अब बढ़ते हैं। और यहाँ पर जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रेडियो मनोरंजन की टीम की ओर से आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और ऑब्वियसली बर्थडे का मौका खास होता है, स्पेशल होता है, और अपनों के साथ जब बर्थडे मनाया जाता है तो ये और भी स्पेशल हो जाता है। तो जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ये जो बर्थडे का मौका है आपके लाइफ में बहुत सारी सक्सेस लेकर आए, आपके सारे जो सपने हैं, आपके जो सारे अरमां हैं वो पूरे हो जाए। और यहाँ पर बेस्ट विशेस आई है भाई सुनील के नाम, जो आज अपना 65th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुनील जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ कालबास की ललिता जी की ओर से, और पूरे परिवार ने आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई भेजी है। 65 साल अपने आप में बहुत बड़ा सफ़र होता है, और इस लंबे सफ़र को काटना, इस यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता है। ऑब्वियसली परिवार का साथ होता है, अपनों का साथ होता है, अपनों का प्यार होता है, और ये अपनों का प्यार ही है जो हमें जो है जोड़े रखता है, एक साथ बनाए रखता है। तो चलिए, दिस इज़ योर सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन, और थोड़ी देर में हम अपने टिकटॉक पेज पर लाइव भी होंगे, साथ ज़रूर दीजिएगा हमारा।

0: अच्छे-अच्छे प्रोग्रामों के जरिए आपके दिलों को जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं।
1: सुहाना सफर।
0: यस सर, दिस इज योर सुहाना सफर। और देखते ही देखते आधा घंटा निकल चुका है प्रोग्राम का। टाइम कैसे बीतता है, आप लोगों से बातें करते करते, आपके मैसेजेस को पढ़ते पढ़ते हमें पता ही नहीं चल रहा। एक गाना ख़त्म होते ही दूसरे गाने की शुरुआत होने का टाइम हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता टाइम कैसे बीत रहा है। तो चलिए, आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे। कोई पुराना गाना सुनना चाहते हैं, किसी के नाम कोई डेडिकेशन करना चाहते हैं, या मोस्ट वेलकम। चलिए, इस समय हम अपने टिकटॉक पर लाइव भी है, बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। We have Queen, we have Rivesh, we have Vimi, we have Nazma Budu, Sanish, Shrad, Hema Ram Gulam Ji, Bindiya Ji hai, Kalyani Ji hai, Malini Bisram Ji, aapka bhi welcome hum karte hain. Nariman Ji, kaise hai? We have Bob, we have Pamela, Shailendra, then we have Danny, Jagru jo Goodland se hamesha hamara saath dete hain. बिल्कुल श्रद्ध, अगला गाना आपकी ओर से साइलेश और दिवेश के नाम हम करेंगे, ओके? स्वीटी जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी ठीक हैं। इंदिरा जी, अगला गाना आपकी ओर से आपके फ्रेंड श्याम के नाम हम करते हैं। ऑलराइट, एमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा राम किशुन जी, आपके भी प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। जूली फिल्म का ये जो अगला तराना है, ये रातें नई पुरानी, ऐसे तो अभी रात नहीं है, दिन का वक्त है, लेकिन इस गाने की फरमाइश जो है नुवेल फ्रांस से वीना जी की ओर से आई है। ये रातें नई पुरानी उनके हस्बैंड देव के नाम, बड़े ही प्यार से। तो चलिए, ऐसा ही कोई प्यारा गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, या कोई फरमाइश है आपकी, साथ दीजिए हमारा ऑन 4028070। यू कैन सेंड योर मैसेजेस ऑन 5250620 पर।

0: सुहाना सफर।
1: यस, ये रातें नई पुरानी जूली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। इनफैक्ट जूली फिल्म अपने आप में इतनी कमाल की थी, फिल्म की स्टोरी लाइन उस समय के लिए काफ़ी एडवांस थी, काफ़ी मॉडर्न थी। किशोर दा ने काफ़ी सारे गाने गाए थे, जूली फिल्म के गाने बड़े कमाल के थे, लेकिन जो एक्टर और एक्ट्रेस जूली फिल्म में नज़र आए थे, इतनी बेहतरीन फिल्म देने के बाद भी वो अपने करियर में उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, है ना। होता है कभी कभार ऐसा, कभी कभार होता है कि पहली ही फिल्म से कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस इतने पॉपुलर हो जाते हैं, इतनी शोहरत उन्हें मिलती है, इतनी कामयाबी उन्हें मिलती है, और फिर देखो तो उसके बाद वो नज़र ही नहीं आते। होता है, सब किस्मत की बात होती है। चलिए, अभी के लिए हमारी खुशकिस्मती है कि आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, रेडियो के ज़रिए तो साथ जुड़े ही हैं, साथ ही यहाँ पर टिकटॉक पर भी हमारे साथ साथ है, तो शुक्रिया। वी हैव रेशमा, रोहित यादव, शवि, वी हैव पूनम, टिकटॉक डिस्को, नियामत, दिव्या, ओमुगम, आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सुमी जी, आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप है मानिता जी, हेलो मानिता जी, फ्रांस से इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू मानिता जी आपके इस लवली मैसेज के लिए। और चलिए, अगला गाना जो है रंग बिरंगी फिल्म का, ये जो तराना है आपके नाम हम करते हैं, और आपकी ओर से सेंट जूलिए में आपका पूरा परिवार रहता है, उनके नाम इस गाने को आप डेडिकेट कर रही है, खासकर आपकी प्यारी माँ सुमंती के नाम, जो शायद इस समय हमें सुन रही है। नमस्ते सुमंती जी, आशा करते हैं आप बिल्कुल ठीक है। और यही गाना जाता है आपकी बहन आरती के नाम, सचिता है, बबीता है, रेखा है, भाई सत्यम, भाभी उषा और पूरे परिवार के लिए, और हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू मानिता जी फ्रांस से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये लवली सा तराना हमारे टिकटॉक के सभी फॉलोअर्स के नाम भी हम करते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए कभी कुछ पल जीवन के, यकीनन ज़िंदगी तो ऐसे अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है, और हमारे अच्छे दोस्त, हमारे रिश्ते नाते, हमारे जो भी हम सफ़र होते हैं ज़िंदगी के सफ़र में, ये हमारे लाइफ के सफ़र को और भी खूबसूरत बनाते हैं। और उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, इसके चलते हम ज़िंदगी को जीना नहीं भूलते हैं। तो ज़िंदगी के हर एक पल को जीना चाहिए, हर रोज़ अपने आप को हर एक चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए, और चाहे जो भी हो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और चलिए, यहाँ पर इस समय हमारे साथ जो है ये गाना जो है, अगला तराना है शीशे का घर, शीशे का घर फिल्म का ये जो तराना है, तुम साथ हो, शैलेंद्र जी आपके नाम हम करते हैं, और ये गाना आपकी ओर से सभी के नाम। ऑल राइट, वी हैव किमी, आपने जो गाना मांगा है थोड़ी देर में हम चलाने की कोशिश करेंगे। परी हमारा साथ दे रही है। मिनी, मिनी आपने कुछ तो रिक्वेस्ट किया था, आपने गाना अपनी मामा और बेटी के नाम डेडिकेट किया था, या माँ बेटी फिल्म का गाना आप मांग रही थी, हम आपके मैसेज को समझ नहीं पाए हैं, तो आप चाहे तो दोबारा हमें मैसेज कर सकते हैं। वी हैव माया रामदोस जी, थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारा साथ देती हैं। गुडलैंड से वी हैव रेशमा, कोटेट से वी हैव माधुरी, और यहाँ पर शवि जो है ग्रॉन्गप से साथ देती है हमेशा, लेकिन इस समय पोर्टलुइस में है, काम करते करते हमारे साथ जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। वी हैव संदीप जोईकरण जी जो कनाडा से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, थैंक यू सो मच। ट्रियोरी से वी हैव फिया, वी हैव ऋतिक, वी हैव रसिक रोशन जी, चलिए आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। अब बातें कम करते हैं और थोड़ा सा गाना चलाते हैं।

0: ना सफर सुहाना सफर
1: तुम साथ हो जिंदगी भर के लिए। ऐसे सच तो ये है, जिंदगी की हकीकत ये है कि जिंदगी भर जीवन भर कोई साथ नहीं देता है। कहते ना कि जितना लिखा होता है उतना ही साथ होता है। अभी के लिए हमारा रफ का साथ है या इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मौका मिलेगा साथ देने ज़रूर आएंगे, इतना वादा ज़रूर करते हैं। और चलिए इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। यहाँ पर यशना जी हमारे साथ जुड़ी है। गाना जाता है आपके नाम और आपके पूरे फैमिली के नाम। शिवानी जो है इनकी शादी होने वाली है इस वीकेंड, तो शिवानी जी आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेज, खासकर कियाना की ओर से, आपकी प्यारी बहन की ओर से। एंड वी हैव रानी, येशना, वी हैव जुबेदा, मंजुला जी हमारे साथ जुड़े हैं। यही रोमांटिक सा तराना अजागैन आपके नाम और कृता महादेव आप दोनों के नाम हम करते हैं। स्वीटी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी है। वी हैव रेखा, फिर परी है जो फ्लाक से साथ देती है हमेशा। तो चलिए भीगी पल के फिल्म का ये तराना चल पड़ा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। लता जी, रफ़ी साहब और साथियों की आवाज़ों में

0: चलिए हमारा और आपका साथ यूं ही बना रहेगा। इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं 1 बजे के समाचार की ओर, और समाचारों के उस पार सुहाना सफर का ये जो सफर है जारी रहेगा।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
0: So, milte hain aap se hum in the second hour of Suhana Safar after the samachar.

0: 94.6, 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: चेक योर टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 1 PM। आइए सुनते हैं समाचार याचना के साथ। नमस्कार।
2: नमस्कार गिनिशा, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अभी भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। एक कंटेनर के लिए भाड़ा शुल्क 1,100 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते इस क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की जा चुकी

0: हैं। विदेशी कामगारों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन का इंतजार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी श्रमिकों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाए। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच स्कोर रहा 4-2। गाना ने पनामा को 1-0 से हराया, जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 उज्बेकिस्तान 1। आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के खिलाफ। आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच एमबीसी प्ले पर आप देख पाएंगे। विदेश में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। उन्होंने तेल रिफाइनरी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। पोंकलविल सावान रोड नुवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंत सुकन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के मकान पोंकलविल सावान रोड नुवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नुवेल फ्रांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan. सुहाना सफर।
0: चलिए गुरुवार 18 जून घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 1:05 होने को है। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफर। और आज मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ। शुक्रिया, आप इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। इस समय लंच करते करते हमारा साथ दे रहे हैं, या काम पर है हमारे साथ कनेक्टेड है, या बस घर से हमारा साथ दे रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आपका साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए शुक्रिया। और आपको तो पता ही है सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में पुराने ओल्ड तराने आपके लिए हम चलाते हैं। और आपके मैसेजेस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें मिल रहे हैं ऑन 5250-6200 पर। और साथ ही इस समय वी आर लाइव हमारे टिकटॉक पेज पर, रेडियो मनोरंजन के पेज पर, जहां पर इतने सारे फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थैंक यू सो मच। चलिए रागिनी जी हमारा साथ दे रही है हसीना मान जाएगी फिल्म का ये जो अगला गाना है, चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलकर, ये गाना आपके नाम जाता है रागिनी जी। एंड यहाँ पर वी हैव शेय प्रसाद जी, थैंक यू, रेखा मोहन एंड जी, हेमा, और वी हैव रीमा जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है यूके से, तनवीर खालिद जी हमारा साथ दे रहे हैं। आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूनम जी वाकवा से हमें देख रही है, कह रही है। शैलेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। नाहिम सिरतन जी कैसे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक हैं। कविता अनु जी नमस्ते, आपको भी थैंक यू शवि आपके प्यार भरे मैसेज के लिए। नाहिम सिरतन जी हम बिल्कुल ठीक हैं, आशा करते हैं आप भी ठीक हैं। वी हैव रुमिता गुंजा, नमस्ते रुमिता जी। वी हैव वीमा पेंटिया, हेलो वीमा जी। शवि हाइड एंड सीक, ओके। शिवानी जी नमस्ते आपको भी। और चलिए साथ साथ मिलते हैं कुर्सी, ओके, ये आपका नाम है कुर्सी, ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं। और चलिए जितने भी लोग लंच करते करते साथ जुड़े हैं, आप सभी को बोना पीछे शुभ आहार हम कहेंगे।

0: चलिए साथ चल रहे हैं और ऐसे ही साथ साथ चलने वाले हैं, आपका साथ हम देने वाले हैं दोपहर के दो बजे तक ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर सुहाना सफर।
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
0: चलिए, बहुत सारे हमारे ऐसे ऐसे लिसनर्स हैं जो बहुत ही फिडेल है, जो इस प्रोग्राम से हमेशा जुड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं, जब भी रेडियो मनोरंजन पर सिर्फ हम ही नहीं, कोई भी जब भी लाइव होता है आप सभी साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके लाइक्स के लिए, आपके लव के लिए इसके लिए भी धन्यवाद। एंड वी हैव गीता जी जो इस समय रिश्ते से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नमस्ते गीता जी, उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक है। क्रांति फिल्म का जो गाना है आपने इसकी फरमाइश की है, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी गाना जाता है गीता जी आपकी ओर से आपकी बेटी रितिशा के नाम, सभी बैजूनाथ परिवार के नाम। एंड यहाँ पर कुर्सी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, काम करते करते हमारा साथ दे रहे हैं। वी हैव शबनम रॉय, जीवन यूजर 13, बुधू एस नंद, लवेना जी ये अगला तराना क्रांति फिल्म का है, आपके मामा अनुषा और नानी आशा के नाम हम करते हैं। नाज भी बड़े प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है और नाज इज़ विशिंग हैप्पी बर्थडे अपनी सिस्टर इन लॉ को जो यूके में है, मेहरून निसा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आपको पूरे फैमिली की ओर से। गियाना शिवसरन जी, थैंक यू सो मच इतने सारे हार्ट्स के लिए, आप उम्मीद करते हैं आप ठीक हैं। हेलो रोशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला गाना ऑलराइट हो सकेगा तो हम इस गाने को ज़रूर चलाएंगे, अभी के लिए जो गाना चलने वाला है इसे आपके नाम हम करते हैं। थैंक यू शवि, यू ऑल्सो टेक केयर। पैमेला पैमेला, हेलो पैमेला जी, शुरुआत में भी आपका मैसेज मिला था, अभी फिर आपका मैसेज मिला, इसके लिए थैंक यू। रानी आप गुड नहीं सॉरी

आप पोर्टलुइस से हमारे साथ जुड़ी है, थैंक यू सो मच। राधा रानी है आपका नाम, ओ लवली नेम राधा रानी। और पूनम जी, पूनम दौलतिया जी, आप वाकवा से हमारा साथ दे रही है, थैंक यू सो मच पूनम जी। वी हैव जैक, थैंक यू सो मच। परी, इतने सारे हार्ट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चलिए ये प्यार ऐसे ही मिलता रहे। हम तो मानते हैं कि हमारे लिसनर्स हैं, हमारे सुनने वाले हैं, तो हम हैं, ये प्रोग्राम है, आप नहीं होते तो हम कहाँ होते, है ना। तो चलिए, क्रांति फिल्म का ये गाना चल पड़ा उन सभी के नाम जो ये गाने को पसंद करते हैं। ऐसे शायद ही कोई होगा जिसे क्रांति फिल्म का ये गाना ना पसंद हो। लता जी, नितिन मुकेश और साथियों की आवाज़ों में

0: ना सफर सुहाना सफर
1: जी हाँ, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हम तो मानते हैं कि समय के साथ जिनसे भी हम प्यार करते हैं ना, वो प्यार बढ़ते रहता है, कभी प्यार कम नहीं होता। प्यार कम हुआ तो वो प्यार कैसा है ना। तो चलिए, यहाँ पर प्यार भरे गानों का ये जो कारवा है जारी है। अगला तराना दिल से मिले दिल फिल्म का ये टाइटल ट्रैक है, किशोर दा और साथियों की आवाज़ों में। कल्याणी जी, इस गाने की रिक्वेस्ट आपने की थी, तो ये गाना आपके नाम हम करते हैं। और यहाँ पर यही गाना आरजे भूपी आपके नाम जाता है, हॉलैंड से मनोज जी हमारा साथ दे रहे हैं। सो ये तराना आपके लिए भी। गियाना जी, जो गाना आपने मांगा है, थोड़ी देर में मौका मिला तो इसको चलाने की कोशिश हम करेंगे। ऑलराइट, वी हैव रविंद्र चंद जी, नुश रोहित अजमेर जी और सुल्ताना जी, आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर सीला जी, थोड़ी देर पहले हमने आपके भाई का नाम जो है बर्थडे डेडिकेशन में शामिल कर दिया था, उनके लिए गाना भी चला दिया था। एक बार फिर से आपका मैसेज आया है, तो आपके भाई को जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई, आपके भाई सुनील को। ऑलराइट, और चलिए दिल से दिल को जोड़ते हैं इस गाने के ज़रिए। तो चलिए, ऐसा ही कोई तराना सुनना चाहते हैं, किसी के नाम करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। दिस इज़ योर सुहाना सफ़र ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: ना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए उम्मीद करते हैं इन गानों को सुनते सुनते दिल से दिल मिल ही रहे होंगे। अगर कोई अनबन हुई है किसी अपने के साथ तो इन गानों को सुनकर वो अनबन भी दूर हो रही होगी, क्योंकि प्यार में छोटी मोटी नोकझोंक तक ठीक है, उससे ज़्यादा होता है तो प्यार में दरार आ जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है ना। और ज़िंदगी का सफ़र अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपनों को प्यार करते रहिए, अपनों का साथ देते रहिए। अभी के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अगला गाना जाता है सलीम जी आपके नाम, साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिशूल फिल्म का ये गाना आपके नाम और आपके सभी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए।

सविता जी, अगला गाना आपके लिए राजकुमार के नाम टोनी फिजी से साथ दे रहे हैं। दिलवंती जी, ये गाना आपके नाम, दादी माँ के नाम इस समय बड़े ही प्यार से हमें सुन रहे हैं। नीलिमा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। वानेसा, वी हैव शर्मिला बुधन, दिलेन, इंदिरा जी, प्रवीण जी, आप लोगों का साथ भी हमें मिल रहा है। राधे राधे, गंगा दिन, मनीष जी, आप भी जुड़ चुके हैं। मैं हूँ सुमी शालू जी उम्मीद करते हैं आप ठीक है। सुनील दत्त जी, नमस्ते सुनील दत्त जी, कैसे हैं? मिमी, कैसी है आप? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक है। चले, जो गाना आपने मांगा है, ओ सनम तेरे हो गए हम, नीलिमा जी, मौका मिला तो इसे हम ज़रूर चलाएंगे। अभी के लिए जो गाना चलने वाला है, ये आपके नाम हम करते हैं, आपके मामा रेणुका के नाम करते हैं। पालमा से आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं ये जो टिप आपने, ये जो बात पूछी है माधुरी जी, थोड़ी देर में आपको बताते हैं हम, ओके और यहाँ पर नसीम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। शाहिद जी पाकिस्तान से साथ दे रहे हैं। अब्दुल सत्तर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और ये जो रोमांटिक सा तराना है, लव माया, आपके नाम, बबासन से, रॉबर्ट की ओर से।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: चलिए यहाँ पर प्यार भरे गीतों का ये जो कारवाह है इसे आगे ले जाते हैं। और ये जो अगला तराना है, सुबी जी आपके नाम हम करते हैं, हम दोनों मिलके, ये गाना हमारा फेवरेट है मुकेश साहब आशा जी की आवाज़ों में। और उत्तम जी यही गाना आपके लिए, मीनू अथवाल जी जर्मनी से हमारा साथ दे रही है। और यहाँ पर एक मैसेज हमें मिला है व्हाट्सएप पर, आपने जो तस्वीर भेजी है हमें याद है आप, ओके राजेन रघुपत जी लंदन से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें याद है आपने जो तस्वीर भेजी है, ये महाशिवरात्रि के समय की तस्वीर है, गंगा तालाब पर जब हम लाइव इंटरवेंशन कर रहे थे तो आप हमसे मिलने आए थे। चलिए आपका मैसेज मिला, बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी, ऐसे ही साथ देते रहिए हमारा, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय द वे आप टिकटॉक पर रेडियो मनोरंजन के पेज को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर जब भी लाइव होगा आप लाइव से भी जुड़ सकते हैं अगर इस समय आप हमें सुन रहे हैं तो। ऑलराइट, और चलिए बारी है इस अगले गाने की। अगला गाना संजना जी, संजना नारायण जी आपके नाम हम करते हैं। आपने क्या लिखा, आपने किसी खाने की बात की है, ओके शाहिद इकबाल खान जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो अगला खूबसूरत सा गाना है ये जाता है वेनिता जी आपके नाम, वेनिता दनु आपकी ओर से आपके हस्बैंड विनन के नाम, आप दोनों बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फ्रांस से इस समय नासिम जी हमारा साथ दे रहे हैं। एंड चलिए वेनिता जी ये गाना आपके नाम। और सुभाषनी जी, यस सुभी सुभाषनी जी वाकवा से गाना खास कर आप ही के लिए, ओके
2: यू आर लिसनिंग टू RM3 रेडियो मन।

0: अजी चिट्ठियों का ज़माना तो कब का चला गया, अब तो इंस्टेंट मैसेजेस का ज़माना है और अब तो मैसेजेस का दौर ऐसा आ गया है कि मैसेज तो आ जाता है, नोटिफिकेशन तो हमें मिल जाता है, लेकिन कभी कभार हम मैसेज जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे खोलते हैं, जब मन होगा तब देखेंगे, है ना।
1: सुहाना सफर।
0: पहले तो ऐसा था कि घर में एक ही फ़ोन हुआ करता था, वो जो तार से जुड़ा हुआ होता था, एक बार बजते ही घर के कितने सदस्य दौड़ कर जाकर उस फ़ोन को अटेंड करने जाते थे। और अब तो हमारे फ़ोन में एक दिन में इतने मैसेजेस आते हैं, कभी दो दो दिन तक हम अपने मैसेजेस को खोलते भी नहीं हैं या इग्नोर करते हैं, जो भी वजह है, जैसी भी वजह है, लेकिन हम मानते हैं कि कोई हमें मैसेज कर रहा है, हमारे साथ जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें याद कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने हमारे बारे में सोचा है, कहीं ना कहीं शायद उसे हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या कोई मदद चाहिए होगी। तो इसलिए कभी भी किसी भी मैसेज को हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, या अपनी सहूलियत के हिसाब से। हाँ, जब हम बिज़ी है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उस मैसेज को अटेंड कर पाए, जवाब दे पाए, एक्नॉलेज कर पाए, तो सामने वाले को भी लगता है कि हम उनके को वो इज्जत दे रहे हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर एक प्यार का नगमा है, यहाँ पर ये गाना जाता है साधना मुकेश आपके नाम। लालमाची से हमारे साथ जुड़े हैं, परी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और यही तराना रेशमा जी आपके नाम हम करते हैं। माला जरी जी बड़े ही प्यार से साथ दे रही है, गाना आपके लिए भी। वी हैव क्वीन स्कोपियो, बिकेंद्र साहब, शमा जी, आप सभी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़े हैं। और यहाँ पर किसी ने हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर की रिक्वेस्ट की थी, हमारा जो व्हाट्सएप है वो है रेडियो मनोरंजन का व्हाट्सएप है 5250620, 5250620। फिरोज़ जी कैसे हैं जी, हम बिल्कुल ठीक है। पूर्णिमा नत्थू जी नमस्ते आपको भी। फिरोज़ जी नीदरलैंड से हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फिरोज़ जी। ऐसे व्हाट्सएप टिकटॉक के ज़रिए, एमबीसी प्ले ऐप के ज़रिए बहुत आसान हो गया है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। केतिका विक, हेलो हाउ आर यू, नमस्ते आपको भी। स्वीटी, हाय स्वीटी, हाउ आर यू, मोस्ट वेलकम माधुरी जी। नसीम रहमान जी फ्रांस से आप हमारे साथ है, गर्मी से फेस ब्लैक हो जाए तो क्या करना चाहिए। ओहो, ऐसे तो ये टिप्स का प्रोग्राम तो नहीं है, पता नहीं अभी तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, पर शुक्रिया साथ देने के लिए। अभी के लिए गाना आपके लिए हम डेडिकेट ज़रूर कर सकते हैं।

जाते ये जो आखिरी गाना है यहाँ पर आपके नाम हम करते हैं हेमा जी, बड़े ही प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रकाशवती जी बेल्जियम से हमारा साथ दे रही है, ज्ञान बिहारी जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाना जाता है सुनील, रानी, शीतल और अनिल के नाम। यहाँ पर प्रकाशवती जी और श्रीति जी, अगला गाना आप दोनों के लिए। यहाँ पर ट्रॉबुचिक से बहुत सारे हमारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं, जितने सुनने वालों ने रेडियो के

हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी फॉलोअर्स ने टिकटॉक के ज़रिए हमारा साथ दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेजेस तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम जो है ख़त्म होने को चला। ये जो आखिरी गाना है द ग्रेट गैम्बलर, इस फिल्म से लिया गया है, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। तो चलिए ऐसे ही दिल से दिल यहाँ पर मिलते रहेंगे जाते जाते। आप सभी के साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर माला जी है हमारे साथ, सुदेवी जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, परी है, फौजी है, विमला जी है, थैंक यू सो मच विमला जी, अभी ना जाओ जाएंगे तब ना हम दोबारा लौटेंगे। अभी के लिए तो 2 बजे यहाँ पर हमारी आपकी मुलाकात ख़त्म हो रही है, लेकिन ये है कि क्या बोलते हैं 2:30 बजे से हमारी आपकी मुलाकात होगी आपकी पसंद इस प्रोग्राम में रेडियो मॉरिशस पर। आज ही 2:30 नहीं, आज तो थर्सडे है, तो 2:45 बजे हम मिलेंगे आप सभी से आपकी पसंद इस प्रोग्राम में। तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने गानों की फरमाइश कर सकते हैं। आज थर्सडे है तो दोपहर के 2 बजे जो है आप नाट्य कला इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे। 2 बजे के समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए बस ऐसे ही साथ देते रहिए ऑन रेडियो मनोरंजन, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते, और रेडियो मनोरंजन पर जब भी मौका मिलेगा ऐसे ही जुड़ते रहिए, हमारा साथ यूँ ही देते रहिए।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: RM2, Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music.
2: Time check, 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
3: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। एक कंटेनर के लिए भाड़ा शुल्क 1,100 अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और इंश्योरेंस लागत भी व्यापारियों पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की जा चुकी हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन का इंतजार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी श्रमिकों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाए। पहले चरण में भारत से 300 श्रमिकों के आने की उम्मीद है। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड और क्रोएशिया के

0: बीच स्कोर रहा 4-2। गाना ने पनामा को 1-0 से हराया, जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 और उज्बेकिस्तान 1। आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के साथ। आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच एमबीसी प्ले पर आप देख सकते हैं। विदेश खबरों में, यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। मोंडेजियावाक्वा में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री चंद्रसेन गणपत जो पुलिस केटरिंग अफसर एसएमएफ में थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर ढाई बजे उनके मकान मोंडेजियावाक्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पालमा के क्रिमेटोरियम ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio TV, NBC Radio TV.
2: Up center, 95.5. North, south, 95.6. East, west.
3: Radio Musty.

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
3: स्वागत करते हैं आप सभी का जो हमें दिख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, प्यारे दर्शकगण, प्यारे श्रोतागण। नाट्य कला कार्यक्रम आप लोगों के लिए, और यह कार्यक्रम खास तौर पे सभी नाटक प्रेमियों के लिए जो नाटक खेलते हैं, नाटक का मंचन करते हैं, नाटक लिखते हैं, और इसमें आप लोग अभिनय भी करते हैं। अभिनय का मतलब एक्टिंग, जहाँ पे निर्देशन होता है, लाइन्स होते हैं, और डायरेक्टर अपना मतलब जो ऑर्डर्स है और राइटर जो अपने लाइन्स है वो दे देते हैं, और इमोशन के साथ आप नाटक के हर एक घटना को आप मंच पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ एक और कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आज हमारे कार्यक्रम के मेहमान हैं मृणाल गुहारू, जो वाकवा के रहने वाले और नाटक प्रेमी हैं, नाटककार है और एक डांसर है और सितार एजुकेटर भी है। मृणाल जी, आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्ते।
4: नमस्ते रितेश जी,
3: आप कैसे हैं?
4: अभी ठीक हूँ।
3: मतलब जो आपने हमें बताया कि आप एक नाटककार हैं, नाटक करते हैं, नाटक में भाग लेते हैं, और जैसे कहते हैं कि शास्त्रीय नृत्य भी आप करते हैं, कुचिपुड़ी और कथक
4: जी,
3: और एक आप एक सितार एजुकेटर भी हैं
4: जी,
3: और क्या क्या है आप?
4: बस अभी के लिए इतना ही।
3: अभी के लिए इतना ही। चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं। मृणाल, बहुत ही अलग नाम है, सुंदर नाम है। मृणाल का अर्थ क्या है?
4: मृणाल का अर्थ है जो कमल के फूल होते हैं वो उसका जो स्टेम होता है उसे मृणाल कहते हैं।
3: अच्छा,
4: कमल के स्टेम को वो मृणाल कहते हैं।
3: अलग नाम है और बहुत ही सुंदर नाम है मृणाल।
4: ये पापा ने नाम रखा था तो उनको थैंक यू।
3: बहुत ही सुंदर। और आप थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं। शुरुआत हम करते हैं थिएटर के साथ
4: जी।
3: तो आप कब से थिएटर के साथ, नाटक के साथ जुड़े हुए हैं?
4: 10 साल तो हो गए अब। 2015 में शुरू किया था।
3: 2015 में, कोविड से पहले
4: जी, इससे पहले शुरू किया था। तब हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, बे हिंदी किया मैंने, तो तभी से कुछ दोस्तों ने कहा, जो हम आप तो जानते होंगे हमारे श्री राजेश्वर सितोहल, उनकी एक टोली है वाकवा रंगभूमि कला मंदिर, तो हम विश्वविद्यालय में साथ में पढ़ते थे। तो फिर उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि तुम नाटक क्यों नहीं करते, मेरा ग्रुप है तो ट्राई करना चाहोगे, कोशिश करना चाहोगे? तो मैंने भी मजाक में कर दिया।
3: उन्होंने आप में क्या ऐसा देखा कि उन्होंने कहा कि हाँ, ये आने वाला उभरता कलाकार है?
4: जब मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने कहा कि तुम भी ना वो तुम्हारे चेहरे का हाव भाव, तुम्हारे एक्सप्रेशंस, वो मुझे चाहिए स्टेज पर। और फिर उसको पता चला कि मैं नृत्य भी करता हूँ, क्लासिकल डांस। तो फिर उन्होंने शायद कुछ देखा कि हाँ, मैं इसको लेके स्टेज पर डाल सकता हूँ परफॉर्म करने के लिए और उभरने के लिए। तो हाँ, फिर मैंने तो मजाक में ट्राई किया था। फिर जब सीखा उनसे बहुत कुछ, तब धीरे धीरे फिर 7 साल होने के साथ था।
3: मतलब थिएटर से पहले आप डांस करते थे?
4: डांस तो बचपन से ही करते थे।
3: बचपन से ही
4: जैसे फिल्मों में जैसे देखते थे, फिर वही स्टेप्स इमिटेट करते थे।
3: डांस के बारे में जरूर बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, अभी के लिए नाटक के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो जैसे ही आदर्श ने आपको देखा और कहा कि इसमें कोई ना कोई बात तो है जो आगे चलकर स्टेज पर अपनी कला दिखा सकता है, तो आपने इसको

0: कैसे स्वीकारा आपने? आप मतलब आप सरप्राइज हो गए या फिर आप थोड़े से खुशी हो गए या फिर आप कंफ्यूज हो गए?
1: कंफ्यूज, थोड़ी सी हिचक भी थी क्योंकि मैं मुझे ये पता नहीं था कैसे होगा कि लोगों के सामने परफॉर्म करना. वैसे नाटक डांस तो होता है लेकिन डायलॉग डिलीवरी तो बहुत हिचक हो रही थी. फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा सा ट्रेनिंग करेंगे. फिर किया हमने कंपटीशन से पहले शोज़ किए नवरात्रि के दौरान. तो फिर वहाँ से मुझे वो स्टेज परफॉर्मेंस का थोड़ा सा ज्ञान हुआ. फिर यू नो बिकम मोर एट ईज विद इट. तो फिर धीरे हम उसी से सीखा मैंने. तो जैसे चढ़ते हैं ना सीढ़ी तो बस पहुँचते पहुँचते यहाँ भी पहुँच गए. तो
0: आप मतलब नाटक में जाने से पहले मृणाल कैसा था और नाटक में भाग लेने के बाद अब मृणाल कैसा है? वह कमल की जो डंडी है वो बड़ी हो गई है अभी तक छोटी है?
1: नाटक से पहले मृणाल बस एक बहुत ही शांत स्वभाव का शांत बहुत चुपचाप रहने वाला अपने कोने में पड़ा रहना ऐसा था मृणाल.
0: लेकिन डांस भी करता था ना?
1: डांस भी.
0: अच्छा.
1: लेकिन जब डांस कर रहा तब मुझे लगता कि हाँ मैं अपने ही तत्व में हूँ. लेकिन वो डांस कहीं ना कहीं बस वो जैसे होता है ना वो अपने ही जोन में लोगों के सामने नहीं अपने कमरे में थोड़ा सा जैसे बाथरूम सिंगर वैसे बेडरूम डांसर. तो हाँ तब वो बस इतना ही था. फिर जब आया फिर धीरे धीरे इसीलिए हिचक हो रही थी ना कि नहीं नहीं लोगों के सामने नहीं होगा मुझसे नहीं होगा ये सब. लेकिन नहीं वो जो कॉन्फिडेंस बूस्ट उन्हें दिया मुझे तो हाँ फिर वो हुआ. फिर डांस डायलॉग डिलीवरी. फिर जैसे हम विश्वविद्यालय में परफॉर्म करते थे तो वहाँ से शुरू हुआ वो परफॉर्मेंस. जब दोस्तों के बीच मैं परफॉर्म हुआ जो उन्होंने मुझे सराहा प्रशंसा मिली तब मुझे लगा कि हाँ वो प्रोत्साहन मिला कि हाँ इसको बेडरूम से निकाल कर स्टेज पे लाऊं.
0: क्या बात है, बिस्तर तो वही रखा
1: जी. तो कहीं ना कहीं हाँ मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि मैं हाँ वो अरे तू अच्छा करता है करना स्टेज पर हम देखेंगे. तो हाँ वहाँ बेडरूम से लेकर स्टेज पर
0: बहुत ही सुंदर. अब मृणाल मतलब नाटक से पहले वाला मृणाल और नाटक के बाद वाला मृणाल आपने बता दिया. तो प्रोसेस कैसे हुआ हम जानना चाहेंगे, ट्रेनिंग कैसे थी?
1: ट्रेनिंग में तो बस थोड़ी डांट पड़ती थी कि जोर से बोलो ऐसे बोलोगे स्टेज पर दबंग होके बोलो.
0: इसके एक्सरसाइज सब होते हैं?
1: हाँ बहुत आवाज़ की प्रैक्टिस क्योंकि आवाज़ तो बहुत धीमी थी. तो हाँ बोले नहीं और वो बहुत दूर जाके खड़ा होता था पर बोलो डायलॉग बोलो नहीं सुनाई दे रहा है वो गले की गले आवाज चली जाती थी. लेकिन बोलते थे नहीं और जोर से चिल्लाओ चाहिए मुझे लोगों के सामने चिल्लाओ सब. तो ट्रेनिंग फिर उन्होंने कहा चले मूवमेंट करके दिखाओ डांस करके दिखाओ सबके सामने ऐसे ही इम्प्रोवाइज. तो वो ऐसे ट्रेनिंग हुई. फिर ये वो जो शाय मृणाल था वो थोड़ा दबंग होके निकला स्टेज पर.
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर. तो बेडरूम वाला मृणाल अभी स्टेज वाला मृणाल बन गया.
1: स्टेज वाला मृणाल. और जैसे कहते हैं कि हम अब एजुकेटर भी बने तो एजुकेटर तो ऐसे ही होना चाहिए ना क्योंकि अब कक्षा के सामने
0: बिल्कुल
1: कैसे क्लास करेंगे और बोलना ही नहीं आता. तो
0: बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद भी इसके बारे में भी बात करेंगे. अभी के लिए आपने कहा कि कोविड से पहले मतलब 2017 में आपने शुरुआत की थी,
1: 15-16
0: में, और लगभग 7 साल आप रहे नाटक में
1: जी.
0: कौन कौन से नाटक में आपने भाग लिया?
1: पहले तो अगर देखा जाए तो हमने 4 भाषाओं में भाग लिया मैंने. वो हिंदी इंग्लिश क्रियोल और भोजपुरी भी थोड़ा. तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ गरास कहते हैं वो नेशनल ड्रामा कंपटीशन तो शुरुआत तो वहीं से हुई थी.
0: अच्छा
1: मेरे पहला नाटक जो मैंने किया वो क्रियोल भाषा में था.
0: क्रियोल में पहला नाटक
1: पहला.
0: और आपने कहा कि क्रियोल में आपने भाग लिया, अंग्रेजी में भाग लिया और हिंदी भोजपुरी और चार भाषाओं में. एक एक्टर के लिए भाषा एक बैरियर होता है या फिर एक एक्टर को सभी भाषाएं जाननी चाहिए, इसके बारे में बताइए.
1: नहीं भाषा कभी भी बैरियर नहीं होता चाहे वो नाटक हो नृत्य हो संगीत हो भाषा कभी भी नहीं. लेकिन हाँ अगर आप कह रहे

0: कि हाँ मुझे एक भोजपुरी नाटक करनी है, तो मुझे भोजपुरी तो आनी चाहिए, लेकिन मेरे साथ तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि भोजपुरी या फिर क्रियोल में अगर आप किसी को एक गूंगे का पात्र दे तो उसके लिए भाषा तो कोई मायने नहीं रखता ना। अगर वो एक गूंगे का पात्र कर रहा है तो उसे बस एक्टिंग आनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन, तो फिर भाषा का कोई महत्व नहीं उसमें।
1: मान लीजिए आपको कोई भी भाषा मतलब आप जर्मन नहीं गई है, इटली नहीं गई है, तो इटालियन भाषा आपको दे दिया जाता है एक नाटक जो इटालियन भाषा में है, तो आप कर पाएंगे? उसका डायरेक्टर सब होंगे, मतलब एक्टर के लिए भाषा बैरियर नहीं होता,
0: आपको बस वो उस पात्र का जो उसकी जो मूल है उसको पकड़ना चाहिए, क्या भाव वो प्रस्तुत करना चाहता है अपने ऑडियंस के सामने, तो अगर आप वो पकड़ लेना तो हो जाएगा एक्टिंग।
1: आप रिहर्सल करते थे, जैसे कि आपने कहा कि वाकवा रंगभूमि कला मंदिर, वहाँ पे आप जाते थे या रिहर्सल करते थे और वापस आते थे घर पे, तो रिहर्सल सिर्फ वो कला भूमि रंग मंदिर में ही होता था कि घर पर भी आपको करना पड़ता था?
0: आईने के सामने वो अपनी जो स्क्रिप्ट है वो देख के बोलना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करे, तो फिर थोड़ा बहुत रिसर्च भी, थोड़े से
1: रिसर्च मतलब कैसे,
0: थोड़े इस एक्टर से थोड़ा इंस्पायर हो, थोड़ा करना पड़ता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई शराबी का पात्र मिले, तो अगर आप शराब नहीं पीते आपको नहीं पता, तो थोड़ा बहुत रिसर्च तो करना पड़ेगा कि एक शराबी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, जब वो बोलता है तो कैसे लड़खड़ा कर बोलता है, तो चलता है कैसे।
1: आपने कभी शराबी का रोल किया?
0: एक बार किया था, छोटा रोल था।
1: कहते हैं कि मतलब जो एक्टर होते हैं, बड़े बड़े एक्टर होते हैं, वो लोग कहते हैं कि शराबी का रोल करना है तो उसको एक्सपीरियंस करना है तो थोड़ा बहुत पीना ही चाहिए, आपका अनुभव क्या है?
0: नहीं, शराब नहीं पीती। हाँ, लेकिन निर्देशक की मदद से फिर जैसे मैंने कहा रिसर्च तो हो जाता है, जैसे और जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कभी ना आप एक्टर कभी को नहीं दिखते, आप अपने जैसे बोलते हैं अपने ही एनवायरनमेंट में अगर आप किसी को देखते हो वो सच्चा होता है, क्योंकि एक्टिंग में कभी कभी वो जैसे हमने कहा वो पी के हुआ वो फिर भी थोड़ा सा झूठा होता है। अगर आप किसी पक्की शराबी को देखे ना तो देखेंगे कि अरे यार इतना तो नहीं लड़खड़ाता, वो इतना बोलने में इतना होता नहीं, लेकिन नाटक में थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन होना पड़ता है,
1: मतलब एक एक्टर,
0: लेकिन फिल्मों में इतना नहीं, लेकिन
1: एक एक्टर को मतलब ऑब्जर्वेशन बहुत ही जरूरी है, हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए हर एक पात्र को। आप पोर्टलिस जाएंगे, वाकवा जाएंगे, कातरबोन जाए, कहीं पे भी आप शादी में जा रहे हैं तो बहुत सारे पात्र होते हैं आपके सामने, तो उसको बस ऑब्जर्व करके अपने एक्टिंग बैग में रखना है और जब भी जरूरत पड़े बैग से निकाल। आप 7 साल रहे नाटक के साथ और 7 साल में आपने बहुत सारे नाटकों को प्रस्तुत किया है, बहुत सारे नाटकों में आपने भाग लिया है, अभी तक आपका सबसे पसंदीदा कैरेक्टर पात्र आपका कौन सा है जो आपने खेला?
0: एक था वो मैं और राजेश्वर साथ में थे, हमने कथावाचक का रोल किया था हम दोनों।
1: अच्छा,
0: जैसे लाइक डुओ होता था, तो वो मेरा सबसे जो यादगार है, जो बहुत मजा भी आया था करने को और लोगों को याद भी है वो कैरेक्टर हम दोनों आए, क्योंकि वो बहुत फनी था और जैसे मैंने कहा मैं गूंगा था उसमें। तो जैसे गूंगा होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ थोड़ा बहुत ये
1: एक उदाहरण आप करके अब अगर याद हो तो,
0: जैसे आएंगे थोड़ा बहुत अरे भैया क्या हुआ, तो देखा क्या हुआ लेकिन आता है क्योंकि वो गूंगा होता है तो वो कम्प्लीटली म्यूट नहीं होता कि आवाज ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है वो, तो थोड़ा ये हुआ। फिर हम आए, वो मुझे थप्पड़ मारता है, गिरा देता है, तो देयर वाज लाइक वी से कॉमेडी ऑफ एक्शंस बहुत था उसमें, तो क्योंकि एक तो आप बोल नहीं पाएंगे तो लोगों को फनी डायलॉग कैसे समझाएंगे, तो वो एक्टिंग के बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कॉमेडी ऑफ एक्शंस उससे हमने वो कॉमेडी तैयार की और प्रस्तुत किया।
1: और इस गूंगे के पात्र के लिए

0: आपके रिसर्च के बारे में हम जानना चाहेंगे, कहाँ कहाँ पे किन किन को आपने देखा, नाम बताने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे किन किन को आपने देखा, किस तरह से ऑब्जर्व किया।
1: पहले तो फिल्मों में एक्टर जैसे बोलते हैं, जैसे होता ना वो ये हूँ
0: तुषार कपूर वाला,
1: तुषार कपूर थोड़ा सा वो तो बहुत ही सबको तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जैसे पहले के जमाने में होती थी ना म्यूट फिल्म्स जिनमें आवाज नहीं होती थी, वो देखना पड़ा क्योंकि तब तो बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन ही आपका माध्यम है, नो डायलॉग्स। तो वो नॉट ओनली द तुषार कपूर फनी पर्ट, लेकिन जो म्यूट फिल्म्स होती थी क्योंकि डायलॉग तो होते ही नहीं थे उनमें, तो उनको ऑब्जर्व करते कि कैसे वो एंट्री लेते हैं, अगर उन्हें कुछ अभिव्यक्त करना है तो कैसे बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, या फिर तो ऐसे ही होता था वो रिसर्च।
0: गूंगे का पात्र हमने मूवीज में देखा और नाटक में भी देखा, आपके नाटक में जहाँ पे आपने गूंगे का पात्र किया था हमने वहाँ पे देखा, आपका पात्र थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप है लेकिन इमोशनल टाइप भी होता है गूंगे का पात्र।
1: हाँ होता है, क्यों, गूंगे लोगों को दुख नहीं होता है, गूंगे लोगों को भी दुख होता है, गुस्सा भी आता है, तो जैसे मैंने फिर भी कहा तो
0: बिना डायलॉग के एक गूंगे का पात्र लोगों को रुला सकता है,
1: बहुत रुला सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा तो जो फेशियल एक्सप्रेशन है, मैंने कहा फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज वो बहुत सहायक होता है एक एक्टर के लिए। लोगों को लगता है कि एक्टिंग बस सिर्फ डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग केवल डायलॉग डिलीवरी ही नहीं होते, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे चलते हैं स्टेज पे, आप आपकी बस एक मूवमेंट आपके कैरेक्टर को दर्शाती है जब आप पात्र बताते हैं। तो अगर आप गूंगे हैं तो वो भी आपकी जो पहली एंट्री होती है वो दिख जाता है कि आप कैसा कैरेक्टर है, फनी है, वो डिप्रेसिंग वाला है। तो
0: आपने एक बहुत ही अच्छी बात उठाई है कि आपका एक मूवमेंट आपके पात्र को दर्शाता है। कई लोग नाटक में भाग लेना चाहते हैं, कई लोग नाटक में भाग लेते हैं, लेकिन जैसे मृणाल ने कहा रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है, रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारा पात्र फीका पड़ जाता है और फीके पात्र के साथ नाटक भी थोड़ा सा उसका स्तर भी गिर जाता है। तो रिसर्च वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है, शोध आप कीजिएगा अपने पात्र के बारे में और साथ ही साथ अपने पात्र को आप स्टेज पर लाइएगा, अपने पात्र को आप जिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। मृणाल आपके बारे में जरूर बात करेंगे और अभी के लिए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर गाना, उसके बाद फिर से बात करते हैं।

0: नाट्य कला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक हिस्सा हमारा। नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्य कला।
1: और इस बार नाट्य कला में हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान के रूप में आए हुए हैं मृणाल गुहारू, जो एक नाटककार है, एक एक्टर है और डांसर भी है, और सितार वादक और सितार एजुकेटर है, जो कॉलेज में काम आप करते हैं। अभी के लिए हम आपके जीवन से जुड़े हुए जो भी आपके अनुभव है नाटक के साथ, इसके बारे में बात करें। अभी आपने कहा कि किन किन नाटकों में कितने साल तक आपने नाटक में भाग लिया है और कहाँ कहाँ पे भी आप गए हैं। अभी हम जानना चाहेंगे किन किन नाटकों और कितने कितने पात्र आपने निभाए हैं गूंगा के अलावा।
2: गूंगा, शराबी, फिर क्या था, लड़की का भी किया। हाँ, लड़की देवी, क्योंकि हमारे जो निर्देशक थे राजेश्वर जी, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा तो है, यू आर वेरी लाइक वर्सेटाइल एक्टर जैसे बोलते हैं ना, तुम किसी भी रोल में भी यू नो घुस सकते हो। लेकिन हाँ, तो नाटक में थोड़ा बहुत यू नो साइड कैरेक्टर्स भी किया थोड़ा, लेकिन फर्स्ट हाफ में ये कैरेक्टर किया, फिर बाद में चेंज हुआ। तो उन्होंने कहा कि यार, लेकिन हाँ मैंने वो रोने वाला डिप्रेसिंग वो कम ही किया, क्योंकि रोना आता नहीं उतना।
1: अच्छा, आपको रोना नहीं आता?
2: रुलाना आता है।
1: रुलाना आता है।
2: नहीं, किया हमने सब कुछ, थोड़ा सा डिप्रेसिंग भी। वी एक्सपेरिमेंट, ये एक्टर का काम क्या होता है कि जो सभी इमोशंस के साथ उसको एक्सपेरिमेंट करना है। फिर हाँ, वो होता है कि हमारे एक जो फोते होता है, फिर वो उसी में ज्यादा रोल ऐसे होता है, जैसे आप हमारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं,
1: तो शाहरुख खान वाला, हाँ,
2: वो हो जाता है उसका
1: हीरो टाइप, रोमांटिक हीरो,
2: उसकी एक पहचान हो जाती है कि हाँ ये तो रोमांटिक वाला है।
1: हाथ फैला के ऐसे,
2: अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, तो फिर होता है। लेकिन इसका ये मतलब है कि अमिताभ बच्चन जी कभी रोए नहीं, या फिर शाहरुख खान ने कभी एक्शन नहीं किया, तो होता है हम एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। तो मेरा क्या था, उन्हें कहा कि हाँ तू तो बहुत वर्सेटाइल है, तू कहीं कभी भी गेटअप चेंज करके कोई भी बन सकता है। तो उन्हें कहा कि चलो इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं।
1: सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर आपके लिए जो आपने निभाया है कौन सा था?
2: सबसे डिफिकल्ट सोचे, लक्ष्मण थोड़ा किया,
1: लक्ष्मण
2: रामलीला में, फिर थोड़ा देवी का रोल किया, वो अलग
1: लड़की का भी रोल,
2: लड़की का भी मैंने कहा लड़की
1: था,
2: नहीं वो उतना नहीं, क्योंकि मैंने कहा वो कलाकार होता है, वो जैसे होता है वो पानी की तरह होता है, जिस वो पात्र में डालो उसको वही आकार लेना पड़ता है। तो लड़की का भी किया, तो उतना कठिन भी नहीं था। फिर हाँ, जैसे बोलते हैं वो पति का रोल किया था, वो भी जिस पर जुल्म होता था।
1: अच्छा।
2: वो मेरे लिए कठिन था, क्योंकि मुझे हंसी आ रही थी बहुत, पत्नी जुल्म कर रही है, मुझे हंसी आ रही है, तो वो मेरे लिए बहुत कठिन था कि जो पति का रोल है वो डरा डरा होता है, वो चुप चुप के होता है, पत्नी मार रही है, तो वो मेरे थोड़ा कठिन था, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे ज़्यादातर वो कॉमेडी वाला रोल होता था, तो जब थोड़ा सा डर हुआ। फिर एक कैरेक्टर मैंने किया था जो अंत में वो पागल हो जाता है, पागल, तो वो मेरे कठिन था, क्योंकि पागल कैसे होता है, किस तरह का पागल होता है, तो जैसे बोलते हैं ना कि यार वो या वो, तो यू हैव इल्यूजन्स, तो वो मेरे

0: बहुत कठिन था बिकॉज यू हैव टू इमेजिन थिंग्स. ये एक पात्र नहीं कि हाँ डायलॉग है आपको पता है कि कैसा पात्र है, नहीं लेकिन पागल का कैसे होता है नो जो वो उस लेवल का पागल जो यू नो वो इमेजिनेशन में है, वो इल्यूजन होता है, डरा डरा होता है, उसे लगता है कि हाँ कोई है कोई नहीं है, तो वो कठिन था.
1: कॉमेडी रोल निभाते निभाते नॉर्मली क्या होता है कि जब नाटक चल रहा है स्टेज पर तो लोग कॉमेडी को देख कर लोग हंसते हैं, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर एक्टर नहीं हंस रहा है, वो तो अपना एक्टिंग कर रहा है. लेकिन ऐसे करते करते आपको कभी कभी कभी भी हंसी नहीं आती है?
0: बहुत
1: ऑन स्टेज.
0: ऑन स्टेज होता था.
1: फिर आप लोग क्या करते हैं?
0: वो इम्प्रोवाइज कभी कभी इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, कभी कभी नहीं वो हाँ तो इम्प्रोवाइज भी होता है, लेकिन फिर भी हम we have to be present on the stage. हाँ थोड़ा distraction होता है but हमें अपने character को नहीं छोड़ना चाहिए, ये कभी भी नहीं होता. तो we just have to focus again अपने character में. थोड़ा बीच बीच में ही एक लंबी सांस लो और यहाँ, क्योंकि क्या होगा अगर हम ज़्यादा वो उस पर ध्यान देंगे जो थोड़ी हंसी आई तो उसमें, तो नाटक भी बिगड़ जाएगा ना.
1: लगे हाथ आपके आपके साथ शेयर भी कर लो और जो हमारे साथ हमें सुन रहे और देख भी रहे हैं उनके साथ भी हम साझा कर लेते हैं कि गुरु जी एक बार ने उन्होंने कहा जब आप हंसी का एक सीन कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं जोर जोर के पेट पकड़ के हंस रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिंग को एक्टिंग की एक स्पीड होती है उसको थोड़ा सा धीमा कर लीजिए, नहीं तो मिस हो जाता है. और जो मेन पार्ट मिस हो जाता है, एक बार हमने क्या किया, एक लोग हंसने लगे और एक बहुत ही अच्छा डायलॉग आने वाला था, वो हंसी के बीच में लाफ्टर के बीच में वो गुम हो गया. तो इसीलिए डायलॉग की जो स्पीड है या तो आप रोक सकते हैं या तो उसको आप धीमा कर सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है. कुछ टेक्निक्स होते हैं थिएटर में. तो मृणाल गुहारो, आप 7 साल आप जुड़े रहे नाटक के साथ, अभी आपने कहा कि आप डांस भी करते हैं, नृत्य भी करते हैं.
0: नृत्य भी करते हैं,
1: इसके बारे में हम जानना चाहेंगे.
0: वो नृत्य जैसे मैंने कहा वो बचपन से ही था मुझे, वो जो नाटक है वो बाद में उसकी उसमें रुचि आई, लेकिन नृत्य और संगीत वो तो बचपन से ही मुझे उसमें रुचि थी. जैसे बॉलीवुड के गाने सुनते थे, टीवी पे देखते थे, जैसे वो डांस एक्टर जो स्टेप्स करता था तो उसको देख के फिर थोड़ा सा नो नकल करते थे. तो धीरे धीरे ऐसे हुआ, फिर उसको डेवलप किया डांस के थ्रू. बहुत डिफरेंट स्टाइल्स भी, शैलियाँ जो डांस नृत्य शैलियाँ हैं, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया, थोड़ा फ्यूजन लाने की कोशिश की. तो फिर बाद में शास्त्रीय संगीत
1: क्लासिकल
0: डांस में रुचि हुई.
1: कौन से क्लासिकल डांस में?
0: थोड़ा बहुत कुचिपुड़ी किया, फिर कथक भी कर रहे हैं.
1: अरे वाह, अभी आप कथक कर रहे हैं, सीख रहे हैं. कुचिपुड़ी आपने किया किस लेवल तक?
0: सर्टिफिकेट लेवल तक.
1: बहुत ही सुंदर. मतलब एक्टर एक्टिंग के साथ साथ डांस, तो ये मतलब फायदेमंद होता है आपके लिए, बेनिफिशियल होता है?
0: बहुत.
1: किस तरह से?
0: अगर देखा जाए तो नृत्य के माध्यम से एक्टिंग में मुझे फायदा हुआ, ना कि रिवर्स. क्योंकि जैसे डांस में होता है, जैसे मैंने कहा एक्टर की बॉडी लैंग्वेज होती है, फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो तो डांस से ही आता है. जैसे डांस में बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव, वो जो रस होता है, तो उसके माध्यम से मुझे, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे हमारे जो निर्देशक है उन्होंने मुझे डांस करते देखा, नृत्य करते देखा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ उसमें इसमें तो एक्सप्रेशंस कमाल के आते हैं, बॉडी मूवमेंट भी है, न्यू फ्लेक्सिबल बॉडी, तो एक्टर के लिए ये भी तो ज़रूरी होता है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी जो अपने एक्टिंग में थ्रू फिर एक्सप्रेशन. तो अगर देखा जाए तो नृत्य के माध्यम से मुझे एक्टिंग में बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे बोलते, क्योंकि नृत्य में भी अगर देखा जाए तो नृत्य के 3 पहलू होते हैं. एक जो होता है नृत्य जो होता है वो होता है बेसिक डांस मूवमेंट्स विद रिदम. उसमें ना कोई भाव होता है, ना कोई संदेश है, नो मैसेज, नो इमोशन. फिर वो दूसरा पहलू होता है नृत्य, हाँ इसमें एक्सप्रेशन होते हैं, जब आप अपने नृत्य के माध्यम से आप एक संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो नृत्य होता है.
1: अच्छा, एक नृत्य

0: नृत्य होता है, नृत्य होता है,
1: नृत्य में, नृत्य में वही एक्सप्रेशन भाव, आप एक संदेश पहुंचा रहे हैं, आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर वो तीसरा पहलू नाट्य आता है, नाट्य, नाट्य मतलब नाटक,
0: नाटक
1: ड्रामा। अच्छा। जब आप नृत्य में ही आप एक पात्र को

0: माध्यम से आप एक कहानी को बता रहे हैं. अलग अलग पात्र होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, लाइव म्यूजिक होता है. तो वही अगर आज के ज़माने में यू इवॉल्व होके फिर जो हमारा जो नाटक है, जो हम जैसे नाटक आज देखते हैं, वहाँ से फिर ऐसे आया द इवोल्यूशन ऑफ ड्रामा. तो पहले तो डांस के रूप में होता था वो. तो इसलिए
1: तो जब आप नृत्य करते हैं, आप एक कैरेक्टर में जा करके, लेकिन वहाँ पे डायलॉग्स नहीं होता है.
0: नहीं, डायलॉग्स नहीं होते हैं.
1: इमोशंस और फेशियल इमोशंस,
0: हाँ, लिरिक्स को दर्शाते हैं. जैसे अगर आप लगे हाथों, ओके, अगर आप एक गणेश वंदना कर रहे हैं तो आप गणेश जी को डिस्क्राइब करेंगे. जैसे वक्रतुंड महाकाय, उनकी बड़ी बड़ी बड़े कान, लंबोदर, तो नैन, तो वो ऐसे
1: एक युद्ध का सीन भी आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं नाटक के
0: नृत्य में? जी, जैसे हम महिषासुर मर्दिनी करते हैं, तो फिर जब माँ दुर्गा आती है तो उनकी उनकी जो जैसे वो थोड़ा रौद्र भी है, तो वीर रस भी होता है, तो उनकी जो एक्सप्रेशन होते हैं, बड़ी आँखें, तो मारती है, फिर महिषासुर आता है वो.
1: हाँ? तो जो भी नाटक में होता है आप नृत्य में भी दर्शा सकते हैं. बहुत ही सुंदर. और नृत्य तो आप जैसे हमने कहा कि बचपन से
0: ही.
1: और आपने डिप्लोमा किया है कथक में, नहीं कुचिपुड़ी में,
0: सर्टिफिकेट
1: कुचिपुड़ी में. और कथक तो आप शौक रखते हैं और आप सीख रहे हैं. उसके साथ मृणाल गुहारू, आप एक सितार एजुकेटर भी है.
0: जी,
1: ये मतलब ये वाला पात्र, ये वाला कैरेक्टर आपने कैसे निभाया, कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में जानना चाहिए.
0: जो सितार मेरे जीवन में तब आया जब मैं सेकेंडरी स्कूल में था, जैसे होते हैं फॉर्म वन में. फिर तब पता नहीं था, तो कॉलेज में थे, उन्होंने कहा कि हाँ एक सब्जेक्ट है म्यूजिक और डांस. तो मैंने कहा तो डांस तो होता ही है, तो मौका मिला कुछ और सीखूँ. नहीं, मुझे क्या, वो सीखने वो की जो का जो कीड़ा होता है ना वो मेरे अंदर है. आप जो कुछ भी मुझे सिखाएंगे मैं सीखूंगा. तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो तबला है, सितार भी है. मैंने कहा कि अच्छा, सितार कैसे होता है, क्योंकि उससे इससे पहले तो कभी नाम सुना नहीं. तो मैंने कहा ये सितार कैसे होता है, ये इंस्ट्रूमेंट. तो उन्होंने हमको दिखाया, फिर जब देखा, जैसे होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, तो मेरा वो था सितार के साथ.
1: अच्छा,
0: तो फिर वहीं से सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुआ, फिर सर्टिफिकेट किए, डिप्लोमा किया, डिग्री की. तो अब करते करते एजुकेटर बन गए.
1: मृणाल जी, आप नौजवान हैं और आपने बीए हिंदी किया है और सर्टिफिकेट किया है कुचिपुड़ी में. और सितार, समय कहाँ मिला है सितार बीए करने के लिए?
0: तो वो पैरेलल होता था. अच्छा? साइमल्टेनियस, हाँ. जैसे सुबह बीए हिंदी की कक्षा होती थी, शाम को सितार डिप्लोमा की कक्षा होती थी, तो दिन उसी में चला जाता. देखिए क्या होता है, जब आप पढ़ना चाहते हैं, आप सच्ची में वो करना चाहोगे, तो समय अपने आप निकल आएगा. निकालना नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे निकालना चाहिए समय इसके लिए. नहीं, वो अपने आप आता है, क्योंकि आपको उससे प्यार है जो आप करते हैं. तो अगर देखा जाए तो ये मेरा एक छोटा सा संदेश है कि आप जो भी करें ना, वो दिल से करो, प्यार से करो, जेन्युइनली करो. तो समय क्या क्या है, वो आधी रात को भी सितार लेके बजा सकते हैं, आधी रात को भी तांडव कर सकते हैं,
1: पड़ोसी को भी उठा सकते हैं.
0: तो मेरे लिए शायद वही हुआ, क्योंकि सब अपने आप ही आया मेरे पास.
1: बहुत ही सुंदर.
0: तो जब वो आया मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया.
1: और कुछ सीखने के का इरादा है?
0: हाँ,
1: और क्या आने वाला है, जरा बताइए.
0: शायद वायोलिन.
1: अरे वाह, बहुत ही सुंदर. मतलब कह सकते हैं कि आप एक पूर्ण कलाकार हैं. कलाकार किसी भी ढांचे में, किसी भी मोल में, किसी भी रूप में अपने आप को ढाल सकता है. तो जैसे मैंने प्रश्न किया कि एक्टिंग और डांस के बीच में आपने तुलना की, किस तरह से एक्टिंग नहीं नृत्य आपको सहायता पहुंचाया एक्टिंग में. अब हम जानना चाहेंगे रंगमंच और सितार प्लेइंग ऑन स्टेज, इसमें तुलना कर सकते हैं, या फिर रंगमंच ने आपको कोई एडवांटेज पहुंचाया?
0: हाँ, हाँ पहुंचा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा नाटक में भी संगीत का प्रयोग होता है और

0: पहले के ज़माने में तो लाइव होता था संगीत, तो हाँ वो, और कहते हैं ना कि संगीत में ही भाव होता है, तो जब वो थोड़ा वो संगीत बजाते हैं, वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ना, तब वो जो भाव होता है वो उभर के आता है। तो संगीत और नाटक में जो संगीत होता है वही भाव को उत्पन्न करता है, और हम अच्छे से अपने कैरेक्टर को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने भाव को उभर कर अपने ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हाँ वो संगीत होता है वो, क्योंकि संगीत ही ऐसा है जो होता है वो, मानो एक चाबी होती है, तो ये इमोशन, ये चाबी लगा तो ये इमोशन, तो वो संगीत हमको देता है, क्योंकि संगीत में जो शब्द नहीं होते हैं कि जिस, अगर देखिए शब्द होता है कि जैसे प्रेम, क्रोध, तो आपको पता चलता है प्रेम क्या होता है, क्रोध क्या होता है, लेकिन संगीत जैसे हमारे स्वरों के माध्यम से कैसे दिखाएंगे कि हाँ इसमें से प्यार उभर रहा है, नहीं इसमें से एक दुख है, तो हाँ।
1: तो अभी के लिए जैसे शुरुआत हमने की मृणाल जो एक स्टेज एक्टर है, और उसके बाद हम आए मृणाल जो एक स्टेज डांसर है, अभी हम आएंगे मृणाल जो एक सितार प्लेयर है। तो एक गीत सुनते हैं, उसके बाद हम तीनों को मिलाकर मृणाल जो एक्टर के साथ साथ डांसर के साथ साथ सितार प्लेयर भी है, इनसे हम बात करेंगे इस गाने के बाद।

0: पाठ्यकला, रंगों की भाषा, भावों की धारा, जहां मंच पर हर एक किस्सा हमारा, नाटक पर आधारित कार्यक्रम नाट्यकला।
1: आप जुड़े हमारे साथ नाट्यकला कार्यक्रम के साथ, और इस बार हमारे साथ है मृणाल गुहारू, जो एक स्टेज एक्टर है और एक डांसर भी है और एक सितार एजुकेटर, सितारा वादक भी है। और अभी हम बात करने वाले हैं उस मृणाल से जो एक पूर्ण कलाकार है। आपके पास आपका एक्टिंग का अनुभव है, नृत्य का अनुभव है और संगीतज्ञ मतलब सितार वादक का भी अनुभव है। आपको अभी कहाँ अपने आप को देखते हैं, एक पूर्ण कलाकार के रूप में या फिर और कुछ सीखना है, जैसे अपने कहे वायोलिन सीखना है? अभी
2: वायोलिन भी तो संगीत से ही जुड़ा हुआ है, तो पूर्ण कलाकार के रूप में, क्योंकि मेरा जो क्या था वो जैसे होता है वो छोटा सा सपना होता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वैसे ही पहचाने कि हाँ ये कलाकार है, हाँ ये एक डांसर है, ये एक एक्टर है। तो कहीं ना कहीं वो जैसे होता है वो इमेज बन रही है थोड़ा, क्योंकि जहाँ जाते हो वो ये तो डांस करता है ना, ये तो एक्टिंग करता है ना। तो मेरा बस ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को स्टेज पर देखूँ, जो कला है वो लोगों तक पहुँचाऊँ, लोग दूसरे लोगों को भी जो प्रोत्साहन करूँ कि हाँ सीखो संगीत नृत्य कला। हमारे जैसे होता है वो संस्कृति का भाग होता है वो संगीत नाटक नृत्य। तो और मेरा क्या, क्योंकि आज के ज़माने में अगर आप जो वो नौजवान को देखते हैं तो उनके लिए वो विशेष संदेश मैं पहुंचाना चाहूँगा कि संगीत संगीत से बड़ा नशा और कोई नहीं। अगर नशा करना है तो संगीत का करो, एक्टिंग का करो, नृत्य का करो,
1: बाकी किसी का नहीं, ड्रग्स का अल्कोहल का बिल्कुल नहीं,
2: वो तो आपको 2-3 सालों में मार ही देगा। लेकिन संगीत वो है आप अमर हो जाते हैं, क्योंकि होता है ना कलाकार वो मरता है लेकिन उसके जो संगीत होते हैं उनके कंपोजिशन, जैसे हम रिसेंटली हमारे जितने भी बड़े बड़े सिंगर वो स्वर रोग से धार गए तो, लेकिन उनके गाने अभी भी हैं यहाँ पर। तो देखा, तो कलाकार तो अमर होता है, अगर अमर बनना है तो आप कला से जुड़िए।
1: बिल्कुल, कला से जुड़िए, आप अमर बन जाइए, नहीं तो आप अपने आप अपना नाम अमर डाल दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आप अमर हो जाएंगे। अभी के प्रश्न के साथ मृणाल जी हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में आपने कहा कि वो मृणाल जो कमल की छोटी सी डंडी जो अपने कमरे में बंद रख के आईने के सामने डांस करता था, अभी यह मृणाल जो एक एक्टर है, एक डांसर भी है और एक सितार वादक भी है, दोनों मृणालों में फर्क क्या है, क्या प्रोसेस हुआ, क्या निकल गया, क्या जोड़ा गया?
2: जो अगर दिखा दे तो वो ही मृणाल वो बड़ा हुआ एक्चुअली। कमल की डंडी खिली, फूल हुआ, अब वो सुगंध फैला रहा है।
1: क्या बात है?
2: नहीं, वो जैसे ना बड़े होते हैं तो हाँ, क्या वो जो हिचक होती थी, जो वो जैसे होता है ना वो शाइनेस, वो कहीं ख़त्म हो गया है, लेकिन वो जो बचपन की चाह थी ना वो अभी भी है, क्योंकि वो बचपन का जो सपना है ना कि हाँ मैं अपने आप की, हाँ मैं डांस करता हूँ, हाँ एक्टिंग आई, संगीत, तो अगर वो नहीं है ना तो ये सब नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैंने उस वो छोटे से मृणाल को जो शांत कहीं भी कोने में पड़ा रहता था, तो कहीं वो अभी भी है मेरे पास, क्योंकि वो ही मुझे प्रोत्साहन देता है कि हाँ और करो और सीखो, अपने नृत्य को लोगों तक पहुँचाओ, अपने कला को लोगों तक पहुँचाओ। तो
1: एक प्रश्न के साथ समय समाप्त भी हो रहा है, मैं देख रहा हूँ घड़ी इशारा कर रही है। तो अगर कोई नौजवान, नौजवान के बारे में बात करेंगे अभी, अगर कोई नौजवान रंगमंच में जाना चाहता है, एक्टिंग सीखना चाहता है, तो एक्टिंग किस तरह से उसके लिए फायदेमंद होता है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं नहीं मुझे बहुत डर लगता है, मुझे स्टेज पर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, या फिर लोगों के सामने घबरा जाऊंगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो नाटक में भाग लेने से उनके लिए क्या फ़ायदा होता है?
2: तो एक उदाहरण तो आपने दे दिया, क्यों वो कॉन्फिडेंट होते हैं,

0: तो फिर वो कला के जो मेरा अनुभव था वो आपको बहुत अनुशासित करता है कला, क्योंकि जैसे आप रिहर्सल करते हैं, जैसे आप सितार ऐसे ही नहीं कोई सितार लेके बजा सकता है, उसकी बहुत प्रिपरेशन होती है, सीखना पड़ता है, घंटों प्रैक्टिस करना पड़ता है। नृत्य के साथ भी ऐसा होता है, एक्टिंग के साथ भी। तो वो अनुशासन लाता है हमारे जीवन में,
1: डिसिप्लिन,
0: आप डिसिप्लिन होते हैं, तो डिसिप्लिन, पंक्चुअल, रिस्पॉन्सिबल भी,
1: फोकस भी,
0: फोकस ये सब होता है। और संगीत तो हमारे माइंड, संगीत, डांस, अगर मैं कहूँ तो परफॉर्मिंग आर्ट्स सबको एक साथ लेकर, ड्रामा, डांस और म्यूजिक, तो परफॉर्मिंग आर्ट्स हमको, हमारे माइंड को बहुत ट्रेन करता है, शार्पन करता है हमारे मेमोरी पावर को, क्योंकि बहुत चीज़ें कंठस्थ करनी पड़ती है, तो वो,
1: और आदमी स्ट्रेस फ्री रहता है,
0: स्ट्रेस फ्री रहता है।
1: आजकल तनाव से ग्रसित कई लोग होते हैं।
0: हाँ, संगीत, संगीत करो, नृत्य करो, स्ट्रेस फ्री रहो।
1: आप स्ट्रेस रहे थे?
0: हाँ, जब परफॉर्म करना था, नर्वस, नर्वसनेस तो होती है, वो तो होती है, लेकिन हाँ, स्ट्रेस नहीं, नर्वसनेस।
1: स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं,
0: मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जैसे कहा कि माइंड शार्प होता है, फिर डिसिप्लिन हो जाते हो, फिर नाटक से वो, जैसे कि ना कि आपको एक फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, तो नृत्य के साथ तो वो भी हो रहा है, तो मतलब आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से आप हेल्दी होते हो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स से। तो हाँ, व्हाई नॉट, मैं तो कहता हूँ कि आओ सभी लोग इस कला से जुड़ जाओ, अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकालो, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं सबके अंदर शायद थोड़ा एक छोटा एक्टर होगा, एक डांसर होगा, लेकिन हाँ वो जैसे हमने कहा, लोग हिचकिचाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं लोग हंसेंगे, नहीं। तो जब आप परफॉर्म करते हो तो वो कॉन्फिडेंस भी होता है कि नहीं, और आप एक पहचान बनाते हो, तो हाँ, यू बिकम लाइक अ कम्प्लीट ह्यूमन बीइंग एंड यू लाइक अ प्रॉपर इंडिविजुअल, एक आइडेंटिटी के साथ, ना कि गुमनामी जीवन जी रहे हो पता नहीं। और वो एक लक्ष्य भी प्रदान करता है वो आपके जीवन, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्टर बनना है तो ठीक है, मुझे डांसर बनना है, तो वो एक आपको एक डायरेक्शन देता है ना कि आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हो। तो हाँ,
1: तो आप मेरे ख्याल से नहीं बल्कि आई बिलीव, मुझे विश्वास है कि आप एक बहुत ही अच्छे अध्यापक है जो बच्चों को संगीत की ओर ले, कला की ओर ले जाता है, और इन सब जो सामाजिक जो कुरीतियाँ होती है, सामाजिक जो मतलब ड्रग्स आदि जो होते हैं, इन सब से दूर रहकर आप लोग, आप उन सभी नौजवानों को संगीत में डालते हैं। आपके जो भावी योजना है, जो आने वाले कल है, उनके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मृणाल गुहारू, आप आए हमारे कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी जो आपने मुझे आमंत्रित किया।
1: और चलिए, इस कार्यक्रम को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आपको छोड़े जाते हैं एक और वादे के साथ है कि फिर से आएंगे एक और कार्यक्रम को लेकर, एक और कलाकार को लेकर। तब तक हमारी ओर से नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। देश के उत्तर में कटनी की अवधि शुरू होने वाली है। अघितेहा में 26 जून को गन्ने की कटनी शुरू हो रही है। इससे कुछ दिन पहले बेलवी कारखाने में आज इस विशेष अवसर पर वहां के सभी कर्मचारियों को जुटाया गया। कई अलग अलग विभाग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे, जिस दौरान वहां पर विशेष प्रार्थनाएं की गई। मध्य पूर्व संकट के चलते संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़े इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कर्मचारियों की भर्ती के लिए करीब 1000 मांगें की जा चुकी हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस के इन इंडस्ट्री अथॉरिटी नियमों के ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन और बदलावों का इंतजार कर रही हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारियों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन किया जाए। पहले चरण में भारत से 300 श्रमिकों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश की खबरों में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। उन्होंने तेल रिफाइनरी के साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर हमलों की पुष्टि भी की है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: You're listening to RM3 Radio।

आप सभी को नमस्कार और आदाब। आशा करती हैं कि आप सब स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। और आज हमारे साथ वैसे टेक्निक पर फैजन नूटाली हैं और प्रोडक्शन सहायिका है दीपशिखा और हमारे जो प्रोड्यूसर है निज़ाम, वे लोग बिल्कुल तैयार हैं इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए और मैं भी बिल्कुल तैयार हूं। और यही आशा करते हैं कि आप 10 बजे तक हमारा साथ ज़रूर देंगे।

0: वैसे आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में काफ़ी महत्व रखता है, विशेष महत्व रखता है। वो क्या है? क्या संगीत और योग मिलकर मानसिक शांति को और बढ़ा सकते हैं? तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित एक प्यारी सी युवती और आप हैं उवानी रामखिलावन, और वे हिंदुस्तानी वायलिन की पार्ट टाइम प्रशिक्षक हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, यानी इंस्ट्रक्टर हैं, साथ ही महात्मा गांधी संस्थान में योग की व्याख्याता यानी कि लेक्चरर भी हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं, और युवानी आपको नमस्कार कहते हुए,
1: नमस्कार।
0: आपको इस प्रोग्राम में हम हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे ये पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं और दर्शकों आपको देख रहे हैं, पहले आप ठीक हैं?
1: जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
0: आप ठीक हो तो आप हमें बताएं कि वैसे आपके जो संगीत सफ़र के बारे में कुछ हमें बताइए।
1: सबसे पहले दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा संगीत सफ़र मेरे बचपन में ही शुरू हुआ, जब मैं 7-8 साल की थी। उस समय काचरबोन में सरगम अकादमी ऑफ म्यूज़िक एंड डांस का एक स्कूल हुआ करता था, और मेरी माँ और मेरे पिताजी मुझे और मेरे भैया को बस में ले जाया करते थे संगीत सिखाने।
0: और आप कहाँ रहती हैं
1: अभी? मैं कोरिमास रहती हूँ। उस समय मैं रिविया जुगांपोर रहती थी।
0: उस समय जब आप बोल रही थी कि आप 7 साल की थी, तो रिविया जुगांपोर से काचरबोन आया करती थी
1: जी,
0: पापा मम्मा के साथ आ गया करती
1: जी।
0: तो अभी आप संगीत के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गई हो, और ये भी हम लोगों ने जाना कि संगीत के साथ साथ आप योग के लेक्चरर भी हैं। तो फिलहाल हम ये जानना चाहेंगे, अगर आप संगीत के दुनिया में हैं तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इस क्षेत्र में आने के लिए?
1: इस संगीत के क्षेत्र में आने के लिए मुझे मेरी माँ से प्रेरणा मिली, क्योंकि वो खुद बहुत साल पहले MGI में अपना डिप्लोमा इन वोकल हिंदुस्तानी किया। तो जब भी मैं उनको गाना गाते हुए सुनती थी, तो मैं सोचती थी कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखूं जिसे मैं उनको एकॉम्पेनी कर सकूं।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, मामा को देखकर ही आपने जैसे जैसे इंस्पायर हुई कि मैं भी संगीत के क्षेत्र में, तो फिर आप इसी क्षेत्र में आगे क्यों बढ़ती गई?
1: मुझे वायलिन बहुत पसंद है, मैं वायलिन
0: वादक हैं आप, मतलब आप इतने सारे जो मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं,
1: हाँ।
0: जैसे कि सितार है, तबला, लड़कियां भी आज
1: जैसे
0: तबला खेलती हैं, फिर है नृत्य और गायन के क्षेत्र में, तो आप वायलिन करती हैं
1: जी,
0: क्यों इस क्षेत्र को चुना आपने?
1: मुझे वायलिन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जब भी मैं कोई गाना सुनती हूँ तो वायलिन पर मैं वो गाना बजाने का प्रयास करती हूँ, और जैसे हम फिंगर्स यूज़ करते हैं नोट्स बजाने के लिए, तो ये मुझे अच्छा लगता है, और इसलिए मैंने वायलिन सीखा और सिखाती भी हूँ।
0: तो बचपन से तुम मतलब जब 7-8 साल की, तुम्हारे साथ वायलिन सिखाना इसी से शुरू किया, या फिर नोट्स वगैरह देख करके तब बाद में वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हाथ में आया?
1: नहीं, पहले मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था जब मैं काचरबोन जाती थी। बाद में जब मैंने MGI ज्वाइन किया, तब मैंने अपना खुद का वायलिन लिया, तब इसी से मैं सीखती गई और सिखाती भी हूँ।
0: अच्छा, तो ये वायलिन जो है वो कंपेयर टू मतलब सितार, तबला वगैरह, ये वायलिन कुछ डिफिकल्ट नहीं मिला तुम्हें?
1: नहीं,
0: नहीं
1: नहीं,
0: अगर इस क्षेत्र में तो बिल्कुल यकीनन तुम्हें डिफिकल्टीज नहीं
1: हुई। नहीं।
0: और MGI में तुम ये पढ़ाती हो वायलिन, हिंदुस्तानी में जो शास्त्रीय संगीत होता है, तुम ये कब से वहाँ कार्यरत हो?
1: MGI मैंने वायलिन सीखना 2012 से शुरू किया, तब मैंने अपना सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स, फिर डिप्लोमा, और बाद में मैंने BA टॉपअप किया वायलिन हिंदुस्तानी में।

0: हाँ शास्त्रीय संगीत मतलब शास्त्रीय म्यूजिक ही मैं सीखती थी, मतलब क्लासिकल म्यूजिक ही सिखाती हूँ।
1: और कितने तुम्हारी कितने विद्यार्थियों हैं, मतलब लड़का लड़की दोनों हैं तुम्हारी क्लास में?
0: दोनों है, लड़का भी है लड़कियां भी है, दोनों
1: है। कैसे दिलचस्पी रखते हैं इस क्षेत्र में?
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्पी रखते हैं।
1: उन लोगों को नहीं कहते हैं कि ये आज मैंने शुरू किया फिर एक सप्ताह दो सप्ताह बाद छोड़ देते हैं, ये नहीं?
0: मुझे मिला है ऐसे केसेस, लेकिन मुझे
1: उन लोगों को
0: कन्विंस करना पड़ता है कि नहीं सीखो, अब क्षेत्र में आ गए हो तो सीखो और सीखो। शुरू में डिफिकल्ट लगेगा लेकिन बाद में आसान हो जाएगा।
1: तो युवा ज्यादा युवा है और यंगस्टर्स हैं इसमें या फिर
0: नहीं? एडल्ट्स भी है,
1: एडल्ट्स
0: भी है।
1: और वो लोग मुझे जैसे तुम सिखाती हो उन लोगों को क्या क्या एक्सप्रेशन है उन लोगों के मुख में कि वो अच्छा लग रहा है जिस तरह तुम सिखा रही हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैसे अभी तुम देख रहे हो बहुत ही छोटे उम्र में बड़े बड़ों को सिखा रही है, तो उन लोगों के रिएक्शन कैसे हैं?
0: किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं तो अपना कार्य करती हूँ, सिखाती हूँ।
1: बिल्कुल। अच्छा युवानी, इस रविवार को यानी 21 जून को हम सब मतलब विश्व संगीत दिवस मनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ भी वर्ल्ड योग दिवस भी मनाएंगे। और जब कि तुम योग के लेक्चरर भी हैं तो MGI ही महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम कर रही हो
0: जी,
1: वो कब से?
0: 2019 से। पहले मैंने सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदा एंड योगा अवेयरनेस कोर्स से शुरू किया, फिर अब मैं डिप्लोमा इन पंचकर्म का कोर्स करती हूँ, इसमें एक मॉड्यूल है योगा, वो सिखाती हूँ।
1: तो तुमने यही मॉरिशस में सीखा अपनी, जैसे कहाँ तक पढ़ा ये योगा?
0: नहीं अपने योग के स्टडीज मैंने पहले BSc किया स्वामी विवेकानंदा योगा अनुसंधान संस्थान में जो बेंगलोर में है, वहाँ डिस्टेंस कोर्स किया। फिर BSc के बाद MSc किया, अभी हाल ही में मुझे मेरा मैंने अपना ग्रेजुएशन किया
1: MSc।
0: धन्यवाद।
1: तो आपके संगीत का, आपके जीवन में संगीत का क्या महत्व है, क्या क्या कह सकते इस बारे में?
0: मेरे लिए संगीत का महत्व लोगों को एकजुट करता है, प्रतिभाओं अनेक प्रतिभाओं को मंच प्रदान करता है, लोगों को ये अवसर प्रदान करता है कि वो अपना टैलेंट एक्सप्रेस करें।
1: और तुम खास करके तुमने कभी मतलब अपने जो जैसे कि इंस्पायर हुए अपने माता पिता से, कहीं ऐसा मौका मिला कि तुम एक प्लेन में या फिर बहुत लोगों के सामने अपना
0: जी? बहुत मौका मिला मुझे। जब मैं अपना वायलिन का कोर्स करती थी MGI में, तो मुझे मौका मिला एनुअल शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, और ऐसे बहुत सारे मौके मुझे मिले हैं MGI के बाहर भी।
1: तो बेंगलोर से तुमने अपना जो MSc मतलब मास्टर्स किया?
0: हाँ।
1: और काफ़ी जैसे कंग्रेचुलेशन तुमको बता भी कह गया, क्योंकि तुमने कहा कि तुमने काफ़ी अभी अपने ग्रेजुएशन की और काफ़ी ओहदे पर पहुंच भी गई है इतने कम उम्र में हम कह सकते हैं। तो अभी रविवार को हम लोग संगीत दिवस मना रहे, क्या क्या कहना चाहेंगी तुमको, कैसे ये संगीत दिवस जो है तुम्हारे मायने क्या क्या कह सकते हो तुम इसके बारे में?
0: मैं इतना ही कहूँगी, संगीत सीखिए, संगीत से जुड़े रहिए, संगीत एक आर्ट है, योग भी एक आर्ट है, बस इतना ही कहूँगी।
1: तो आगे इस प्रोग्राम के जरिए हम लोग योग और संगीत, उसका ये संबंध कैसा है, मतलब अगर ये दोनों साथ मिलकर के कुछ हमारे जीवन शैली में वो आगे बढ़ाते हैं, किस तरह आगे बढ़ाते हैं, इस पर ज़्यादा हम चर्चा करेंगे। और अपने श्रोताओं और दर्शकों से मांग करेंगे अगर कुछ आप जोड़ना चाहेंगे 4028085 पे के जरिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, या फिर कोई विचार भी देना चाहेंगे आप बेझिझक हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो विश्व संगीत दिवस के लिए क्या मायने

0: लगता है, तुमने बताया कि तुम यही कहते हैं कि लोगों को प्रेरित करें कि वो लोग संगीत सीखें, लेकिन तुमने जब संगीत सीखा, तुमने संगीत बहुत छोटी उम्र में, तो कैसे उसके प्रैक्टिस करते हो घर पर? जैसे वायोलिन, अगर पहले तुम्हारे पास वायोलिन नहीं थी तो तुमने खरीद करके तब उसके प्रैक्टिस के बिना, अभ्यास के तो ये नहीं हो सकता है। हाँ। तो कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज, कठिनाइयाँ तुमको मिला जब ये, मतलब काफ़ी 5-6 सालों से कैसे तुमने महसूस किया कि चलो ये वायोलिन ही मैं मुझे सीखना है, दूसरे मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं?
1: मेरे जो गुरु है उनको मैं हमेशा टीवी पर देखती हूँ वायोलिन बजाते हुए, तो मैंने सोचा मैं भी उनके जैसा बनूंगी। और हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत करना चाहिए। पहले शुरू में डिफ़िकल्टी हाँ होता था नोट्स बजाने के लिए, हैंडलिंग ऑफ द बो, हैंडलिंग ऑफ द वायलिन, लेकिन धीरे धीरे मैंने सीख लिया। और ट्यूनिंग ऑल्सो, ट्यूनिंग भी, वायलिन का ट्यूनिंग भी मुझे नहीं आता था, अपने गुरु को देख देख कर मैंने सीखा।
0: बिल्कुल, सीख सीख कर के तुम, लेकिन जब देखते हैं एक वायलिन हम लोगों को अपने गले पर, मतलब जिस तरह हम लोग पकड़ते हैं वो काफ़ी मुश्किल दिखता है।
1: हाँ।
0: लेकिन तुमको तो ये नहीं मिला,
1: नहीं
0: ये मुश्किल अभी तक नहीं है, तो तुमको बहुत बधाई कहेंगे, क्योंकि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो हम सब नृत्य के क्षेत्र में जाते हैं और सितार वादन करते हैं, साथ में हम लोग गायन के क्षेत्र में ये जाते हैं। तो हम आपसे यही मांग करेंगे, अगर आप लोग भी वायलिन सीखना चाहेंगे तो आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि जिस तरह आप युवानी को देख रही हैं वो बेझिझक, इसमें कोई कठिनाई नहीं महसूस होती। तो चलिए, इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए जारी रखेंगे।

0: प्रोग्राम में आप सबका दोबारा स्वागत हम करते हैं और हमारे साथ जिस तरह शुरू से मैं कहा हमारे साथ हैं उवानी राम खिलावन जो इंस्ट्रक्टर हैं वायलिन हिंदुस्तानी में और साथ में लेक्चरर हैं योग मजूर में यहाँ महात्मा गांधी संस्थान में। और जिस तरह उसने बताया कि संगीत को आत्मा की भाषा, जी हाँ संगीत को आत्मा की भाषा कहा जाता है, और जबकि योग शरीर और मन और चेतना के बीच ऐसे स्थापित रखती है। और जब उवानी तुम लेक्चरर की हैसियत से योग इस मजूर में ज़्यादा कार्यरत है तो हम ये जानना चाहेंगे आपके अनुभव में, तुम्हारे अनुभव में संगीत और योग के बीच क्या संबंध है?
1: संगीत और योग के बीच बहुत गहरा संबंध है। जैसे योग शरीर श्वास और मन को एकाग्र करता है, वैसे ही संगीत भावनाओं ऊर्जा और चेतना को संतुलित करता है।
0: अच्छा, तो जैसे तुम बता रही हो कि और तुम जब ये काम कर रही हो साथ ही साथ संगीत सीखती है और योग के लेक्चर होते हैं, बहुत से लोगों को सिखाते, बच्चों को विद्यार्थियों को सिखाते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, कठिनाई नहीं होती ये मैनेज करने के लिए?
1: जी नहीं, कठिनाई नहीं होती है क्योंकि मेरा योग सीखने का समय अलग होता है और संगीत सीखने का समय अलग होता है, तो मुझे बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है।
0: अच्छा, योग में कहते हैं कि हम लोग सब अभ्यास करना, जैसे यही है ये योग अभ्यास, या फिर क्या क्या कह सकते हैं इस बारे में, योग है क्या?
1: योग एक संपूर्ण जीने की एक कला है, हमारे शरीर मन और आत्मा को बैलेंस रखता है
0: जी।

0: जैसे कि कहते हैं समत्व योग उच्छते, भगवत गीता में ये कहा गया है।
1: अर्थात इसका मतलब क्या है?
0: अर्थात शरीर के साथ साथ मन को भी बैलेंस रखना आवश्यक है।
1: तो जैसे जितने

0: आवश्यक है।
1: तो जैसे जितने
0: इंडिविजुअल सोल को सुप्रीम सोल तक जोड़ना, ये कैसे करेंगे हमारे, जब हम अपने माइंड को कंट्रोल करेंगे। पतंजलि योगा सूत्र में कहा गया है योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, द कंट्रोल ऑफ द ससेशन ऑफ द माइंड जैसे हम कहते हैं। तो अगर माइंड को हम कंट्रोल करेंगे तो शरीर भी कंट्रोल में आ जाएगा और सुप्रीम से जोड़ पाएंगे, सुप्रीम सोल से जोड़ पाएंगे।
1: और अगर योग करना है तो कोई निश्चित समय है, तब आप सवेरे को करना चाहिए या फिर शाम को, किस किस समय को योग का अभ्यास करना चाहिए?
0: मेरे लिए योग, हमें योग सवेरे अर्ली मॉर्निंग नाश्ता से पहले, सूर्य उदय के बाद, मतलब जब सूर्य का उदय होता है तब हमें करना चाहिए। इससे हमारा पूरा दिन अच्छा जाएगा, हम एनर्जेटिक रहेंगे।
1: फिर संगीत कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं योगा में?
0: हाँ, तो योग के क्षेत्र में मेडिटेशन आता है। जब भी हम मेडिटेट करेंगे तो एक सॉफ्ट म्यूजिक हम डाल सकते हैं जिसमें हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, मंत्रोच्चारण भी कर सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, सब ये सब भी योग के क्षेत्र में आता है।
1: मतलब अब अगर हम लोग ये मेडिटेशन करते समय ये कुछ म्यूजिक, संगीत, सॉफ्ट म्यूजिक लगा रहे, ये ज्यादा स्मूथली हमारा जो योग ज्यादा ठीक तरह से होगा।
0: हम ठीक से फोकस भी कर पाएंगे।
1: ओके, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कौन से पहलू जो है मन को शांत करने में सबसे अधिक सहायक होते हैं?
0: राग, मतलब जैसे हमने म्यूजिक थेरेपी सुना है तो हर एक राग एक थेरेपी अपने में ही, एक थेरेपी होता है। हर एक राग का एक रस होता है, इमोशंस होता है।
1: मतलब एक राग के जरिए,
0: राग के जरिए
1: ये जो, अगर ये राग मतलब जो भी म्यूजिक हम, चाहे वायलिन चाहे सितार, ये राग होना चाहिए,
0: ये राग होना चाहिए। हाँ,
1: और तुम्हारे जैसे अनुभव इस पर, जब तुम संगीत, जब तुम खुद वायलिन बजाते हो, तुम्हारा जो तुम्हारा अनुभव एक्सपीरियंस कैसा है, कैसे कैसे महसूस करती हो तुम?
0: जब भी मैं वायलिन बजाती हूँ तो पहले जो भी स्ट्रेस होता था वो स्ट्रेस समाप्त होता है, कम होता है, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ और वायलिन में ही एंग्रोस हो जाती हूँ। मेरा मन शांत रहता है और बस।
1: और मतलब अगर कोई ऐसे व्यक्ति तनाव से जुड़े हुए हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है अगर वो संगीत में अपने ध्यान लगाएं या फिर योग करें, अपने अभ्यास करें, तो उसके जो तनाव स्ट्रेस जो है वो काफ़ी हद तक जा सकता है, मतलब
0: जी हाँ,
1: उसके
0: काफ़ी हद तक जा सकता है। योग के माध्यम से कैसे तनाव कम हो सकता है, जैसे प्राणायाम हम कर सकते हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, ब्राह्मरी प्राणायाम, हमिंग साउंड, जैसे कि हम शवासन भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, इससे तनाव कम हो जाएंगे। और संगीत भी, जब हम म्यूज़िक, कई प्रकार के म्यूज़िक होता है, नॉइज़ी भी होता है, जो कम नॉइज़ी भी होता है, तो जब भी हम म्यूज़िक सुने हमें पता होना चाहिए किस प्रकार का म्यूज़िक हम सुन रहे हैं, किस प्रकार का संगीत हम सुन रहे हैं, तब भी
1: हमारी जो तनाव है वो दूर कम, हो सकता है। और मान लीजिए अभी हमें लोगों को देख रहे हैं बहुत से लोग और बहुत ही लोग सुन रहे हैं, उन लोगों ने कभी मतलब योग को शुरू भी नहीं किया, ना ही संगीत काफ़ी प्रभावित है, तो तुम क्या कहना चाहोगे कि ये अगर वो लोग शुरू करें, फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए?
0: संगीत के लिए मैं यही कहूँगी,
1: कुछ ज्वाइन करना चाहिए, एक
0: संस्था में ज्वाइन कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि MJI में ही ज्वाइन करें, किसी भी संस्था में ज्वाइन कीजिए, संगीत सीखिए और योग भी। आप अपने एक गुरु ढूंढिए जिससे कि आप योग सीख सके,
1: मतलब सिंगल नहीं कर सकते, एक एक, एक गुरु जरूरी है,
0: गुरु का होना जरूरी
1: है, तभी ये हो सकता है
0: जी।

0: और अगर योगाभ्यास के दौरान मधुर संगीत का प्रयोग किया जाए तो उसका प्रभाव जरूर पड़ता है हम लोगों के ऊपर भी। और तुम्हारे लिए तुमने अपना वक्त कैसे निकाला, जैसे संगीत में भी हो और योग के भी कैसे अपना समय निकाल दिया तुमने? और जब तुम पढ़ाई कर रहे थे काफ़ी हद तक अपनी पढ़ाई, मतलब HSC तक अगर मॉरिशस में देखा जाए तो हाई सर्टिफिकेट करके, और आप मतलब डिग्री डिप्लोमा MSc, तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? कोई बोलते हैं कि समय ही नहीं मिलता है ये सब करने के लिए, तुमने अपना टाइम कैसे मैनेज किया?
1: इसमें मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जॉब नहीं करती थी, इसलिए मैं अपना समय मैनेज कर पाई। अगर मैं जॉब करती तो मुझे
0: मतलब ये कठिन कुछ कुछ
1: कठिनाई होती। हाँ, तो जॉब ना करने से मैं मैनेज कर पाई दोनों, संगीत और योगा दोनों।
0: और अगर अभी तुम जॉब में लग जाओगी, मतलब तुम जो करती है, तो ऐसे इस टाइम में तुम प्रैक्टिस कर सकती हो घर पर, या फिर कुछ टाइम निकाल सकते हो अपना मतलब अभ्यास करने के लिए?
1: हाँ, मैं निकाल सकती हूँ योग करने के लिए। हमें जल्दी सुबह उठना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग। मैं ज़्यादा अर्ली नहीं कहूँगी, मैक्सिमम 5 बजे, मैं 5 बजे उठती हूँ और अपना योग अभ्यास वगैरह करती हूँ।
0: और संगीत के लिए?
1: संगीत के लिए तो कोई
0: किसी भी टाइम,
1: किसी भी टाइम,
0: किसी भी टाइम कर सकते हो। और तुमने ये सारा कुछ कि अब जैसे हमारे जो सोसाइटी समाज के लिए तुम क्या ऐसे संदेश दे सकते हैं कि दोनों मतलब संगीत और योगा ये दोनों आप लोग अपनाएं, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोगों के जीवन शैली, हम लोगों के जो काफ़ी स्ट्रेसपूर्ण होता है हमारे ये सोसाइटी में, कभी कभी ऐसे देखते हैं जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उतना वो लोग इसमें लगाव नहीं लगाते, तो क्या कहना चाहोगे कि कैसे करें वो लोग? एक उदाहरण तो तुम ही को ले सकते हो, लेकिन तुम क्या कहना चाहोगी अपने लोगों को?
1: मैं यही कहना चाहूँगी, अगर कोई किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, संगीत में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, चाहे गायन हो, इंस्ट्रूमेंटल हो या नृत्य हो, अगर आप सीखना चाहेंगे तो ज़रूर सीखें। किसी भी संस्थान में जाकर एनरोल कीजिए, सीखिए। और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो योग कीजिए और स्वस्थ रहें, और शरीर और मन दोनों को बैलेंस रखें।
0: अच्छा, तुमने कहा स्वस्थ रखें। योग सचमुच एक ऐसी विधा है जैसे ऐसे जो जहाँ एक व्यक्ति अपने आप को अगर बीमार है वो अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं योग कर करें तो?
1: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन एक योग, जैसे कि मैंने बोला, अगर एक बीमार व्यक्ति योग करना चाहेंगे तो अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट, एक गुरु होना आवश्यक है।
0: चाहे जो भी बीमारी, मतलब कोई कोई बीमार होता है वो बोलेंगे कि नहीं मैं ये कुछ नहीं, और ये ज़रूरी है कि हम लोग नीचे बैठें और ये योग करें या फिर?
1: जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। चेयर योगा भी होता है, आप चेयर पर भी बैठ करके योग कर सकते हैं, अपने बेड पर भी बैठ करके योग कर सकते हैं, कहीं भी आप योग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही बैठना है या फिर खड़ा होना है, ये ज़रूरी नहीं है।
0: जी ज़रूरी नहीं,
1: नहीं
0: है। और खाने के मामले में जब योग करते हैं तो इसके हिसाब से हम लोग खा लिए, मतलब कुछ खाया और तुरंत योग कर सकते
1: नहीं,
0: ही नहीं?
1: जी नहीं, अगर आपको योग करना है तो 2 या 3 घंटे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। फिर योग के बाद तुरंत ही नहीं खाना है, 30 मिनट के बाद, मतलब 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद आप खा सकते हैं या 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं।
0: अच्छा, अपने अनुभव से बताएं कि अपने एक्सपीरियंस के तौर पे तो कहाँ कहाँ अपना जो मतलब प्रदर्शन किया

0: ज्यादातर मॉरिशस में ही मैंने शोज किए हैं।
1: और कहाँ कहाँ पर बता सकती हो?
0: मॉरिशस में सबसे पहले तो एमजीआई में ही, फिर मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर, वहाँ पर भी मैं एक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी शोज करने को मिला। एक रिकॉर्डिंग भी मैंने यहीं पर एमबीसी में ही किया था एक भजन ग्रुप के साथ।
1: अच्छा, और जब तुम वायलिन के जैसे बजाती हो, खेलती हो, तो सिर्फ शास्त्रीय संगीत, मतलब शास्त्रीय संगीत के हिसाब से तुम ये खेलती हो, या फिर बॉलीवुड गाने भी तुम?
0: मैं बॉलीवुड गाने भी बजाती हूँ, सेगा भी बजाती हूँ, भोजपुरी गाने भी बजाती हूँ मैं।
1: अच्छा, वायलिन के साथ सेगा भी? हाँ। बॉलीवुड गाने मतलब जैसे धुन धुन धुनें होती वो निकाल सकती हो तुम?
0: जी बिल्कुल।
1: दुर्भाग्यवश हमारे साथ तो अब आज तुम अपनी वायलिन लेकर नहीं आई, फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा तो एमबीसी में शायद कोई प्रोग्राम ज़रूर तुम कर सकती हो। और अगर बॉलीवुड गाने में किस तरह के गाने, कैसे तुम सुन करके वो गाना तब धुन निकालते, क्या कैसे करती हो तुम?
0: बॉलीवुड गाने का मेरा मतलब है, मुझे ज़्यादातर ओल्ड इज गोल्ड पसंद है, पुराने गाने पसंद है। मैं गाने को सुनती हूँ दो तीन या चार पांच बार मैं सुनती हूँ, फिर नोट्स बनाती हूँ, अपने खुद कंपोज करती हूँ नोट्स।
1: अच्छा।
0: फिर बजाती हूँ।
1: मतलब कोई गाना बजता है तो उसके हिसाब से तुम सुन करके उसका नोट्स निकाल सकती है? मतलब जैसे नोट्स तो सारे गामा ये सरगम तो होता है, तो उसके हिसाब से मतलब सीखा है तुम्हें?
0: हाँ।
1: जैसे सुन करके जान जाता है कि ये यहाँ तो सिपा ऊंच पीच है, या फिर इसके हिसाब से अब तक तो तुम सीख गई होंगी?
0: हाँ जी।
1: डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे लिए?
0: मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है।
1: अच्छा, जब बॉलीवुड के गाने हमने सीख रखी, बॉलीवुड के बारे में तुम बॉलीवुड कौन से मतलब पुराने गाने तो पसंद करते हो, और तुम गाती भी हो?
0: नहीं, मैं नहीं गाती हूँ।
1: नहीं गाती। और तुमने अपने जीवन में ये नहीं सोचा कि चलो मैं भी जैसे दूसरे लोग नृत्य सीखें, या तबला बजाएं, या फिर सितार बजाएं?
0: जब मैंने अपना डिप्लोमा किया था वायलिन में, तब उसमें एक मॉड्यूल था तबला, तब थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा तबला। और नृत्य के बारे में मैं कहूँगी कि जब मैं सरगम अकादमी ऑफ म्यूज़िक एंड डांस जाती थी काठरोबोन जब मैं छोटी थी, तो वायलिन के साथ साथ मैंने डांस भी थोड़ा सा सीखा है, मतलब भरतनाट्यम सीखा है थोड़ा सा। और जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे कॉलेज में कथक डांस सिखाया जाता था, वो भी थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा।
1: मतलब संगीत के इर्द गिर्द में ही रह चुकी हो तुम?
0: जी।
1: और जब हम लोग बात कर रहे हैं, तुम अपनी जो वायलिन का जो प्रैक्टिस है, तुम अकेली करती है या फिर तुमको किसी अकम्पनी में, जैसे सितार में जानते हो कि जब सितार तो एक तबला वादक होना चाहिए कि तब ये प्रैक्टिस होता है, क्या तुम भी?
0: हाँ, वायलिन में भी अकम्पनीमेंट का होना आवश्यक है।
1: क्यों ये अकम्पनीमेंट ज़रूरी है?
0: क्योंकि संगीत में एक भाग आता है ना लय, तो हम जब लय के साथ ये इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होता है, ये जो धुन हम बजा रहे हैं ज़्यादा सुंदर हो जाता है लय के साथ।
1: हाँ। अच्छा, अगर मतलब कुछ लोग शुरू करना चाहते हैं संगीत सीखने के लिए, जैसे शुरुआत में तुमने कहा कि कोई भी संस्था ज्वाइन करना है, तुम्हारे पास क्या सुझाव है, क्या देंगे अगर शुरुआती लोगों के लिए कुछ कहना चाहोगे, क्या सुझाव देंगी तुम उन लोगों को, क्या स्टेप क्या क्या करना चाहिए?
0: सबसे पहले तो शुरुआती लोगों को अगर प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहेंगे किसी इंस्ट्रक्टर से, तो इंस्ट्रक्टर को कॉन्टैक्ट करें, उनके पास जाएं और सीखें, तब किसी संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं।
1: और अगर वो जो व्यक्ति उनमें ये संगीत या योग में दिलचस्पी हो तो?
0: जी।
1: अगर दिलचस्पी नहीं है तो वो मतलब कुछ भी सीखने का तो मतलब अच्छा ही नहीं लगेगा।
0: जी।
1: क्या कहती हो इस पर तुम? ज़रूरी है कि इसमें तो दिलचस्पी होना चाहिए। और अगर ऐसे देखा जाए, ऐसे कुछ ऐसे गुनगुनाते हैं घर पर, ये भी संगीत है ना या फिर नहीं?
0: कहा जा सकता है,
1: कहा जा

0: जा सकता है,
1: लेकिन इसका पूरा जो मतलब संगीत का जो सचमुच उसका मतलब, उसका अर्थ, ये सीखना ही जरूरी
0: सीखना है। जरूरी है
1: हाँ। तो और एक ब्रेक लेते हैं, तब अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे। फैजन से गुजारिश है, एक गाना चलाएं।

जहाँ हमारे साथ प्यारी सी उबानी राम खिलावन हैं, जो मतलब शास्त्रीय संगीत में काफ़ी दिलचस्पी रखती हैं और योग के लेक्चरर भी हैं, और ख़ास करके वो वायलिन बजाती हैं। ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही मतलब अच्छी बात आई है। और हम योग और संगीत

0: की चर्चा कर रही है हमारी इस प्रोग्राम में। ये दोनों विधाएं एक साथ जब आती हैं तो आगे बढ़ने से पहले एक श्रोता को जरा सुन लेते हैं। उबानी
1: जी,
0: हेलो हेलो
2: हेलो नमस्ते अनुराधा दीदी, मैं कोटे से आशा जानू बोल रही हूँ।
0: आशा जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस संगीतमय प्रोग्राम में। आप बताइए कैसी हैं आप?
2: मैं अच्छी हूँ, और आज के इस संगीतमय वातावरण में आप जो विषय लेकर आए हैं उसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, और जो हमारी अतिथि आई है
0: जी
2: उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ।
1: नमस्ते,
2: उनको उनसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला
0: जी। बहुत धन्यवाद आशा जी।
2: हाँ जी, तो मैं भी एक दो शब्द जोड़ना चाहती हूँ आज के विषय अनुसार।
0: बेशक बेशक
2: जी। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि संगीत जीवन है, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए संगीत और योग का होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मन उदास है तो संगीत हमें शक्ति प्रदान करता है कि हम अपने मन स्थिति से उभर सकें। और जैसे कि थोड़ा सोचिए, संगीत तो प्रकृति के कण कण में है।
0: बिल्कुल,
2: जब हम सुबह उठते हैं तो चिड़ियों का कलरव करना, जैसे सन सन पवन का बहना, जैसे सूरज की किरणों में, फूलों की खुशबू में जब पत्ते की ससराहट होती है, तो ये जब ये सब हमें ये दर्शाता है कि संगीत हमारे चारों ओर है, हम संगीत के बिना रह ही नहीं सकते। तो आप सोचिए, एक घर में अगर संगीत ना हो, रेडियो ना बजे, गीत संगीत ना हो, तो वो घर तो शमशान की तरह लगेगा।
0: बिल्कुल आशा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
2: जैसा ऐसा लगेगा कि घर घर नहीं है, घर खंडर है। तो इसलिए कहती हूँ, संगीत वो शक्ति है, भले उसमें शब्द न हो, उसे हम महसूस करते हैं, हम अनुभव करते हैं। जरूरी ये नहीं है कि आप एक प्रोफेशनल सिंगर हो या म्यूजिक डायरेक्टर हो, आपको सब आता है। नहीं नहीं, आप भले आप गाना नहीं जानते हो, नाचना नहीं जानते हो, पर उस संगीत का अनुभव करके, संगीत को अपने अंतर मन में उतार के आप अपने कोई भी काम को करते करते, गुनगुनाते हुए करते हैं, तो आपको एक एनर्जी मिलेगी। आपका जीवन, आपका यानी कि जो दिनचर्या होता है वो एकदम अच्छा जाता है। अब मैं अगर पहले के ज़माने की बात बोलूँ, जो पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज, वो पहले तो टीवी रेडियो की सुविधा नहीं थी, पर वो कैसे अपने काम को करते थे, जाते गुनगुनाते, और कभी कभी एक लकड़ी मिली तो उसमें छेद बनाकर उसे बांसुरी बनाकर बजाते थे। तो मैं यही कहूंगी, माँ शारदे की जो आशीर्वाद हमें मिला है और कृष्ण की बांसुरी से जो हमें जो शिक्षा मिली है, वो यही सिखाता है कि संगीत के द्वारा हम प्रेम की गंगा बहाते चलिए और योग से अपने स्वास्थ्य को बेहतर से और बेहतर बनाए रखें। बस
0: आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस प्रेरणादायक संदेश के लिए, और युवानी भी बहुत खुश हैं आपके इन शब्दों को सुनकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस प्रोग्राम में। क्यों युवानी, अब जो आशा ने कहा बहुत बिल्कुल सही है ना?
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। संगीत और योग दोनों को जोड़ करके हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम खास करके मेडिटेशन करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार की म्यूजिक हम लोग सुन रहे हैं।
0: एक और श्रोता को जरा सुन लेते, दीपशिखा ने इशारा किया है। हेलो
3: हेलो अनुराधा जी और मेहमान जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम हम जान सकते हैं?
3: प्रभा।
0: प्रभा जी, स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बताइए क्या जोड़ना चाहेंगे आप?
3: बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती थी, आज मौका मिल गया, और संगीत और योगा के बारे में कह दूं कि अगर ये दोनों साथ साथ है तो मानो सोने में सुहागा हो जाते हैं।
0: सचमुच।
3: और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने योगा सीखी है गुरु, इंडियन गुरु में से, और हमारे यहाँ भी सीख रही थी एक मॉरिशन से, और कभी कभी मुझे मौका भी मिला चिल्ड्रन से योगा सिखाने के।

0: लिए और हमेशा में जब भी मौका मिलती है मैं करती हूँ। और संगीत के बारे में क्या कहूँ, ये तो मेरे बचपन
1: की संगीत की दीवानी तो है ही।
0: संगीत और रेडियो के बिना मैं जी नहीं सकती।
1: आप इसी तरह अपना जो संगीत सुनते रहिएगा और अपना जो योग अभ्यास वो करते रहिएगा, आपका स्वास्थ्य और आपके मन की शांति के लिए ये बहुत ही जरूरी है। प्रभा जी,
0: एक लाइन अगर टाइम है।
1: जरूर जरूर बताए।
0: गीत है ये जिंदगी, गीत है ये जिंदगी, गुनगुनाते और गाते चले चलो चले चलो। धन्यवाद आप दोनों को।
1: धन्यवाद प्रेरणा जी, बहुत बहुत। प्रभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: आपको भी शुभ दिन। आप
1: शुभ दिन
0: को।
1: शुभ दिन आपको भी। तो वैसे हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं रहे उवानी, आपके अनुसार है मानसिक शांति पाने का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र क्या है? कोई मंत्र है जो हम लोग कर सकते हैं ताकि हम अपनी जिस अपने आप को शांत रखें?
2: ओम शब्द का उच्चारण। ओम शब्द जब हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, अ उ और म, तो इसका उच्चारण करेंगे अ उ और म, तो मानसिक शांति मिल सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कुछ शब्द जोड़ना चाहेंगी, कोई संदेश? और आपको, आप जानती हैं कि इस रविवार को हम मतलब संगीत वर्ल्ड म्यूजिक डे, साथ में वर्ल्ड योगा डे, और यहाँ मॉरिशस में पितृ दिवस भी हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो आपके पापा आपके साथ आए हुए हैं, आपको लेकर क्या आए? कुछ शब्द अपने माता पिता के लिए बोलना चाहेंगी आप?
2: मैं बस अपने माता पिता से यही कहूँगी कि मामा एंड पापा, आई लव यू अ लॉट। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप दोनों से, और जो कुछ भी मैं हूँ सिर्फ मामा और पापा की वजह से ही हूँ।
1: अच्छा, एक अंतिम शब्द आप कहना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में?
2: मैं खास करके बच्चों को ये संदेश, बच्चों और उनके माँ बाप को ये संदेश देना चाहूँगी कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को संगीत और योग सिखाने के लिए प्रोत्साहित करें, और ख़ास करके योग। योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हर रोज़ योग रोग को भगाएंगे। बस यही कहना चाहूँगी।
1: वाणी राम खेलावान जी को इन सारी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज की चर्चा से ये समझ में आता है कि संगीत और योग केवल कला और अभ्यास नहीं, बल्कि मन शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रभावशाली माध्यम भी है। तो प्यारी सी वाणी राम खेलावन को बहुत धन्यवाद देते हैं, और साथ में हमारी जो टीम है निज़ाम, फैजन और दीपशिखा को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने श्रोताओं ने हमारे इस प्रोग्राम को सुना, भाग लिया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार और आदाब।
2: नमस्कार।

0: शाम की ठीक 4 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार या सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन स्थिति को पूरी तरह सामान्य पर लौटने में कई महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे इस झटके का प्रभाव जल्द खत्म नहीं होने वाला। इस बीच मॉरिशस की कंपनियां अब भी फ्रेट लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रही हैं। एक कंटेनर के लिए अब भाड़ा शुल्क 1,100 अमरीकी डॉलर तक बढ़ गया है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव और इंश्योरेंस लागत भी व्यापारियों पर ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। कृषि उद्योग में कर्मचारियों की भारी कमी के चलते क्षेत्र के साझेदारों द्वारा विदेशी कामगारों की भर्ती के लिए करीब 1,000 मांगें की गई हैं। विदेशी कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मॉरिशस केन इंडस्ट्री अथॉरिटी नियामक ढांचे में जल्द होने वाले संशोधन और सुधार का इंतजार कर रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी कर्मचारियों के रोजगार के दौरान कार्य परिस्थितियों और मॉरिशस के श्रम कानून का पूरी तरह से पालन हो। फुटबॉल की दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए आज 3 मैच खेले जा चुके हैं। इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच स्कोर रहा 4-2। गाना ने पनामा को 1-0 से हराया, जबकि कोलंबिया और उज्बेकिस्तान की टीम आपस में टकराई और स्कोर रहा कोलंबिया 3 और उज्बेकिस्तान 1। आज रात 8 बजे चेकिया खेलेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ और रात 11 बजे स्विट्जरलैंड टकराएगा बोस्निया के खिलाफ। आपको याद दिला दें कि ये सभी मैच MBC प्ले पर आप देख सकते हैं। विदेश में यूक्रेन ने रशिया की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इसके चलते सुरक्षा कारणों से सभी बड़े हवाई अड्डों की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी हमलों का जवाब बताया। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: Dil se mile dil.

0: 4:09 हो चुके हैं और ये समय है कुछ दिल की बातें करने का, कुछ एहसासों को महसूस करने का। और हम हैं आपके साथ, यानी कि मैं पूनम आपके साथ हूँ आप ही के प्रोग्राम को लेकर दिल से मिले दिल। और इस समय हम चलाते हैं सिर्फ 90s के गाने, जो कि मोहब्बत से भरे होते हैं, आपकी ज़िंदगी से भरे होते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत ही कुल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम और मस्ती से भरे। अगर आपको कोई मैसेज करना है कि आपको कोई ऐसा गाना सुनना है जिसकी लिस्ट आपके बहुत टाइम से आपके दिल में हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 5250 6200 पर। और अगर आप टिकटॉक से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा गाना सुनना है। तो इन्जॉय कीजिए आपका ये कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में प्यारा सा गाना।
1: RM3 रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपका ही प्रोग्राम दिल से मिले दिल। इस समय जो शाम का टाइम है, या तो सुकून चाहिए होता है या थोड़ी सी मस्ती चाहिए होती है कि आगे के पूरे घंटे जो भी हैं हमारे साथ वो बहुत ही अच्छे से गुजरें। तो ये है आपके ही प्रोग्राम जो कि है दिल से मिले दिल। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो बताना है कि आपको कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम, और इस टाइम हम चलाने वाले हैं मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना, तो जो मुझे लगता है सभी के दिल के बहुत ही करीब है। और जब बात हो दिल की तो एहसासों की बात होती है, और जब एहसास जाग जाते हैं तो हमारे लिए कहते हैं कि शाम तो बहुत ही सुहानी हो जाती है पर अगला दिन भी बहुत ही कूल जाता है। तो चलिए एंजॉय करते हैं इस गाने को।
1: RM3 रेडियो।

0: इस समय 4:21 हो चुके हैं और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और जो कि सबसे पहले है विशाल जुम्मन जी, इस टाइम कुशल जी साथ में है, अरुणा, विशाला, विशाखा एंड स्पेशली विकी जो कि इस समय हमारा साथ दे रहे हैं, और रुकैया जी बोल रहे हैं कि बहुत ही प्यारे से गाने चल रहे हैं और साथ में उनको एक और स्पेशल कोई गाना सुनना चाहती हैं। तो भैया हम एक एक करके सबके पसंद के गाने चलाने वाले हैं जिनको भी 90s से ज़्यादा प्यार है। सागर इस समय है, दिनेश गोपी जी, रोशनी जी, श्वेता एंजल एंड शैलेश चरण, अमीना, दर्शनी, शिरले, बहुत सारे लोग। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़े रहने का, और आपकी पसंद के गाने हम चलाने वाले हैं। अगर आपको भी कोई फेवरेट आपका कोई गाना है जो आपके दिल के बहुत ही करीब है, तो ये टाइम सबसे अच्छा है जहाँ पर हम दिल से मिले, दिल में ये गाना चला सकते हैं। तो अगर आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज भी है किसी के लिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इन्जॉय कीजिए आपका ये गाना जो कि करिश्मा कपूर पे फरमाया गया था और पापी गुड़िया मूवी से था। तो इन्जॉय कीजिए दिस वन
1: RM3 Radio. Radio. Radio.
2: Hi.
3: Hi.
2: Do you love music?
3: Yeah.
2: So do I. You know why? 'Cause just like the beat in our heart, there is a beat in music. So beat.

0: 4:29 हो चुके हैं और 18 जून का प्यारा सा दिन यानी कि थर्सडे का इस दिन हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं 90s के वो गाने जिसको कहते हैं कि हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब वही 90s के गाने हैं, क्योंकि उसमें मोहब्बत और प्यार सिखाया गया। और हम जानते हैं कि ये वाला टाइम जो ऐसा था जहाँ पर हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे सीडीज़, कैसेट्स और बहुत सारी फ्लॉपीज होती थी उस ज़माने में, पर हम लोग गाने जो हैं चुपके चुपके सुना करते थे मम्मा पापा से छुपा छुपा के। और ये टाइम ऐसा होता था जहाँ पर हमें लगता था कि हाँ सच में गाने जो है ना बहुत ही प्यारे हैं। तो आज भी इनका जो टेस्ट है वो अभी तक नहीं गया। और हमारे जो भी उस टाइम के लोग हैं जिनको 90s के गाने पसंद हैं, उनके लिए तो ये कहते हैं ना गोल्डन, एक ऐसा एरा है जहाँ पर ये गाने छुपा के रखे जाते हैं। तो इस समय जब लता जी गाते थे या अनुराधा पौंडवाल जी या उदित नारायण या सोनू निगम हो या कुमार सानू हो, इनकी आवाज़ इतनी करीब हो जाती थी ऐसा लगता था शायद पूरा समा ही बदल जाता था। तो शाम का टाइम है, इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं ड्रीम ब्यूटी अनिष्का अजहर, एंजल ललित जी जो कि यूएसए से हैं, हंसराज जी और जो कि प्यारे से एक गाने की फरमाइश कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए एक प्यारा सा गाना चलाते हैं। इंजॉय कीजिए ये गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में, राजा हिंदुस्तानी मूवी से।
1: RM3 Radio.

कहते हैं दिल से अगर जुड़ जाए इंसान का दिल तो बस बहुत सारी बातें अपने आप अचानक से होने लगती हैं, और जब ये गाने चलते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि शायद ये शाम ढल जाए और रात आ जाए, और रात अगर होती है तो ऐसा लगता है सुबह हो जाए, और कभी कभी लगता है कि दिन कभी ना ख़त्म हो और रात होती रहे और ऐसे ही ज़िंदगी ब्यूटीफुल चलती रहे। तो चलिए भाई, हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस समय लवीना जी जो कि अपनी एक मैसेज भेज रही हैं जो कि थोड़ा सा सैड है, बट उन्होंने ये कहा कि ज़िंदगी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है, चलती रहनी चाहिए, अपनी एक अपने बेटे को मिस कर रही हैं, उनके लिए एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। उमा जी क्यूपिप से जुड़ी हुई हैं, शायमा रितेश और साथ में जयश्री, विशिष्ट जुबिन फैमिली और राजन रघुपत जी भी जुड़े हुए हैं जो कि लंदन से हैं, और वो हमेशा ही बहुत ही प्यारा मैसेज

मैसेज करते हैं और बहुत ही जब वो मैसेज करते हैं मेरा दिल करता है हमेशा उनका मैसेज पढ़ने का। तो थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। रॉबी जी जुड़े हुए हैं, आशा जी, कोमल, ललिता, रेहाना, जयश्री एंड आरजे प्रताप भी जुड़े हुए हैं, और जो कि हमारे कलीग हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम में जब गाने ये वाले चलते हैं तो दिल खुश हो जाता है। तो बस इन्जॉय कीजिए आप सब अपने गाने पर। हम आपको इतना ज़रूर कहेंगे, अगर आप शाम की चाय ले रहे हैं तो साथ में ज़रूर कुछ खाइएगा, और जिसको मिस कर रहे हैं उसको एक मैसेज

0: अबे क्या बात है, ये गाना जो बहुत ही पसंद है, जो कि स्पेशली बना था सलमान खान पर और भाग्यश्री पर, और भाग्यश्री का ये पहली मूवी थी जो कि कहते हैं कि रिकॉर्ड्स में आ गई थी, और जब रिकॉर्ड्स बन जाते हैं तो बॉलीवुड वो उस इंसान को बस टॉप पे ले आता है। पर भाग्यश्री ने चूज़ की शादी। यस भाई, शादी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी के अपने अपने चॉइसेस होती हैं और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ अलग ही मुकाम होते हैं, और कहते हैं ना कि अचानक से एकदम से सारी शोहरत मिल जाए तो भी उसके बाद एहसास होता है कि नहीं भाई, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शोहरत से भी ऊपर होती है। तो उन्होंने अगर शादी चूज़ की, अपने बच्चे को चूज़ किया और कहा नहीं मुझे बॉलीवुड में रहना तो है पर थोड़ा सा पीछे रह के, तो चलिए उन्होंने तो बहुत इन्जॉय किया। पर अगला गाना है खामोशी मूवी से अलका याग्निक और हरिहरन की आवाज़ में बाहों के दरमियान, जो कि ललिची यूएसए से है, उन्होंने पसंद किया है और फरमाइश की है, तो हम भी चलाते हैं उनके लिए, क्यों ना हो। ये गाना है इतना खूबसूरत कि आपको लगेगा कि हाँ आज शाम बहुत ही सुहानी बनने वाली है, तो इन्जॉय करते हैं इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: 4:51 हो चुके हैं दोस्तों। इसी के साथ आज का साथ यहीं तक। उम्मीद है गीतों और बातों का सफ़र आपको पसंद आया होगा। मुस्कुराते रहिए, अपने लोगों के करीब रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, फिर मुलाकात होगी। RM3 पर नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, इंजॉय कीजिएगा। आखिरी गाना सड़क मूवी का अनुराधा पौडवाल एंड कुमार सानू की आवाज़ में, और हम इतना ही बस आपको कहेंगे कि इंजॉय कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे। जो भी हमारे साथ टिकटॉक से जुड़े हुए थे उन सबका धन्यवाद, और जो हमें मैसेजेस यहाँ से कर रहे थे थैंक यू उन सभी का दिल से।
1: RM3 रेडियो।

0: नमो नमः सर्वेभ्यः।
1: आज एक बार पुनः डॉक्टर कीर्ति रामजतन और सुश्री सुरभि मोतिया जानातु संस्कृतम संस्कृत को जानिए साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं और हमें तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं श्रीमान संजू टकूरी। हमेशा की भांति इस सत्र का प्रारंभ भी आइए हम प्रार्थना से करें। श्रोताओं, पिछले कुछ अलग अलग सत्रों में हमने वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रियाओं का प्रयोग देखा। आइए आज हम दोनों का इकट्ठा अभ्यास करें। सह गच्छति, सह गमिष्यति।
2: सह गच्छति, सह गमिष्यति।
1: सा गच्छति, सा गमिष्यति।
2: सा गच्छति, सा गमिष्यति।
1: त्वं गच्छसि, त्वं गमिष्यसि।
2: त्वं गच्छसि, त्वं गमिष्यसि।
1: अहं गच्छामि, अहं गमिष्यामि।
2: अहं गच्छामि, अहं गमिष्यामि।
1: भवान् गच्छति, भवान् गमिष्यति।
2: भवान् गच्छति, भवान् गमिष्यति।
1: भवती गच्छति, भवती गमिष्यति।
2: भवती गच्छति, भवती गमिष्यति।
1: ते गच्छन्ति, ते गमिष्यन्ति।
2: ते गच्छन्ति, ते गमिष्यन्ति।
1: ताः गच्छन्ति, ताः गमिष्यन्ति।
2: ताः

0: श्रोताओं, हमने पूर्व में जो सप्ताह के दिनों के नाम सीखे थे, अब उनका प्रयोग वाक्यों में करके अभ्यास करें। सोमवासरे, अम्बा सोमवासरे देवं शिवं नमति।
1: अम्बा सोमवासरे देवं शिवं नमति।
0: छात्रः सोमवासरे विद्यालयं गच्छति।
1: छात्रः सोमवासरे विद्यालयं गच्छति।
0: सोमवासरे जनकः आपणं गमिष्यति।
1: सोमवासरे जनकः आपणं गमिष्यति।
0: मंगलवासरे, अहं मंगलवासरे केवलं फलं खादामि।
1: अहं मंगलवासरे केवलं फलं खादामि।
0: किं त्वं अपि मंगलवासरे केवलं फलं खादसि?
1: किं त्वं अपि मंगलवासरे केवलं फलं खादसि? अपि का अर्थ है भी।
0: अध्यापकः मंगलवासरे एकं श्लोकं वदिष्यति।
1: अध्यापकः मंगलवासरे एकं श्लोकं वदिष्यति।
0: बुधवासरे, बालकः बुधवासरे अष्टवादने दुग्धं पिबति।
1: बालकः बुधवासरे अष्टवादने दुग्धं पिबति।
0: ते बुधवासरे संस्कृतं पठन्ति।
1: ते बुधवासरे संस्कृतं पठन्ति।
0: भवती बुधवासरे कुत्र गमिष्यति?
1: भवती बुधवासरे कुत्र गमिष्यति?
0: गुरुवासरे, गुरुवासरे वयं गीतं गायामः।
1: गुरुवासरे वयं गीतं गायामः।
0: किं यूयं अपि गुरुवासरे गीतं गायथ?
1: किं यूयं अपि गुरुवासरे गीतं गायथ?
0: सः बालकः गुरुवासरे कुत्र गमिष्यति?
1: सः बालकः गुरुवासरे कुत्र गमिष्यति?
0: शुक्रवासरे, अहं शुक्रवासरे सायंकाले चतुर्वादने खेलिष्यामि।
1: अहं शुक्रवासरे सायंकाले चतुर्वादने खेलिष्यामि।
0: सः शुक्रवासरे द्वादशवादने धाविष्यति।
1: सः शुक्रवासरे द्वादशवादने धाविष्यति।
0: ताः शुक्रवासरे कुत्र मेलिष्यन्ति?
1: ताः शुक्रवासरे कुत्र मेलिष्यन्ति?
0: शनिवासरे, जनकः शनिवासरे आपणं गच्छति।
1: जनकः शनिवासरे आपणं गच्छति।
0: सः शनिवासरे संस्कृतपाठं पठति।
1: सः शनिवासरे संस्कृतपाठं पठति।
0: किं त्वम् अपि शनिवासरे संस्कृतपाठं पठसि?
1: किं त्वम् अपि शनिवासरे संस्कृतपाठं पठसि?
0: रविवासरे, वयं

0: रविवासरे प्रातः काले समुद्र तटं गमिष्यामः।
1: वयं रविवासरे प्रातः काले समुद्र तटं गमिष्यामः।
0: रविवासरे छात्रः विद्यालयं न गच्छति।
1: रविवासरे छात्रः विद्यालयं न गच्छति।
0: रविवासरे सर्वे छात्राः खेलन्ति।
1: रविवासरे सर्वे छात्राः खेलन्ति।
0: श्रोताओ, आइए अब हम पूर्व एपिसोड्स की भांति भगवद गीता के प्रथम अध्याय के एक श्लोक का पाठ करें। आज हम वाचन करेंगे आठवें श्लोक का, तो आप पहले सुनिए उसके बाद दोहराइए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च।
1: भवान भीष्मश्च कर्णश्च।
0: कृपश्च समितिञ्जयः।
1: कृपश्च समितिञ्जयः।
0: अश्वत्थामा विकर्णश्च।
1: अश्वत्थामा विकर्णश्च।
0: सौमदत्तिस्तथैव च।
1: सौमदत्तिस्तथैव च।
0: भवान भी

0: करणश्च कृपश्च समिति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च।
1: इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कह रहे हैं कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरि श्रवा।
0: श्रोताओं, अद्यतन कार्यक्रम के अंतिम चरण में आइए हम मिलकर संस्कृत में एक गीत का आनंद उठाएं, जो पशुओं के नामों एवं उनकी ध्वनियों पर आधारित हैं।

तो श्रोताओं, यहाँ पर हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चला। आइए प्रार्थना कर लें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः।

0: 94, 95.6, 98.2 MHz. You're listening to RM Free Radio.
1: इस समय स्टूडियो में 5:28 हुए।
2: राम रसधारा, रसधारा।
1: ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री सरस्वती।

0: नमः। राम रस धारा के सभी श्रोता भाई बहनों को भाई संजय की ओर से जय सिया राम, जय जय हनुमान। आप सबों को रेडियो मनोरंजन की लाइनों पर हार्दिक अभिवादन है। आज हमारे स्टूडियो में तीन बहनें उपस्थित हैं जिनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। माला जी जय सिया राम, माला जी जय सिया राम,
1: जय सिया राम।
0: शिवानी जी जय सिया राम,
2: जय सिया राम गुरु जी।
0: सीता जी जय सिया राम,
3: जय सिया राम गुरु जी।
0: सो आज के इस रामायण सत्संग की शुरुआत करते हैं श्री राम जी की स्तुति, श्री हनुमान जी की स्तुति और सुमिरनी के साथ। जय सिया राम,
2: जय सिया राम।

0: रसधारा।
1: जी हाँ श्रोताओ, जय सिया राम। आप रेडियो मनोरंजन की लैन पर सुन रहे हैं प्रोग्राम राम रसधारा। ये प्रोग्राम हर गुरुवार को चलता है 5:30 से लेकर 6 बजे तक, और इसके अंतर्गत हम विभिन्न संस्थाओं की गायकों से मांग करते हैं कि अगर वे चाहते हैं कि आप कि यहाँ पर आएं, खासकर स्कूल के बच्चों से आग्रह करेंगे, अगर वे चाहते हैं कि यहाँ पर आएं और रामचरितमानस को गाएं, हनुमान चालीसा को गाएं, तो आप हमसे संपर्क रख सकते हैं। जय सिया राम। एक बार फिर आप सबों को आज हम रामचरितमानस के उस भाग का वर्णन करेंगे जहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सती के आत्मदहन के बाद माता पार्वती जी का जन्म का उल्लेख किया है पर्वतराज हिमावन और माता मैनावती के महल में बालकांड के दोहे 67 में। बहनों को सुनते हैं। जय सिया राम।
2: जय सिया राम।

0: रसधारा।
1: जैसे कि पहले हमने आपको बताया था, आज हम उस प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं जहां पर माता पार्वती का जन्म होता है। इससे पहले वाले प्रसंग में माता सती अपनी योगिक शक्ति के बल पर अपने शरीर को भस्म करने से पहले विष्णु भगवान से वरदान मांगती हैं कि वो फिर से जब जन्म लेंगी तो उनके अगले जन्म में वो फिर से सदाशिव शंकर भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनेंगी। श्री हरि नारायण से वरदान प्राप्त कर लेने के बाद माता सती आत्मदाह कर लेती हैं। उसके पश्चात वही माता सती पर्वतराज हिमावन और माता मैनावती के राज्य में सुपुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं और माता पार्वती का आना राज्य को हर प्रकार से ऐश्वर्य और पुष्ट युक्त कर देता है। चले हम सुनते हैं अगला दोहा और अगली चौपाई बहनों के साथ। जय सियाराम,
2: जय सियाराम।

0: जय सिया राम, जय जय हनुमान।
1: राम रसधारा, रसधारा
2: छोटी सी पार्वती शंकर की पूजा करती है। जय सिया राम श्रोता, हुआ आप रेडियो मनोरंजन की लहरों पर सुन रहे हैं प्रोग्राम राम रसधारा, भाई संजय के साथ और तीन बहनें जो हमारे साथ हैं। माता पार्वती वो पहली श्रोता हैं जिन्होंने राम कथा का रसपान किया। माता पार्वती और शिव जी की विवाह के उपरांत जब कैलाश पर्वत पर दोनों पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहाँ पर माता पार्वती शंकर जी से पूछती हैं कि वो राम कौन है, श्री राम कौन है जिनका ध्यान वे निरंतर करते रहते हैं, तो पार्वती जी का विषाद दूर करने हेतु शिव जी राम कथा सुनाते हैं। उसी प्रकार जैसे महाभारत में भगवद गीता के पहले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन जी का विषाद दूर करते हैं, अर्जुन जी के माध्यम से श्री योगेश्वर श्री कृष्ण हम सबको, मानव जात को संबोधित कर रहे होते हैं, उसी प्रकार रामचरितमानस में पार्वती माता के जरिए आदि गुरु शिव शंकर भोलेनाथ जी हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी संशय युक्त माता सती से लेकर जिज्ञासु पार्वती तक की यात्रा दर्शाते हैं। सुनते हैं बालकान दोहा 66 बहनों के साथ। जय सियाराम,
3: जय सियाराम।

0: रसधारा
1: जय सियाराम श्रोताओं, आज के इस आधुनिक युग में माता पार्वती को अनेकों स्वरूप में देख सकते हैं। प्रकृति के स्वरूप में उनका आधार, जी हां, प्रकृति के स्वरूप में उनका आदर करने अनिवार्य है, नहीं तो मानव जात का भविष्य ही संकट में आ जाएगा। अन्नपूर्णा देवी के स्वरूप में माता पार्वती को देखते हुए हमको ये समझना चाहिए कि अन्न का आदर हमेशा करना चाहिए। जहां अन्न का आदर, वहीं पर जल का बचाव भी अनिवार्य है। माता पार्वती को धरती माँ के रूप में देखते हुए धरती मिट्टी का संरक्षण अति अनिवार्य है। ऐसे देखा जाए तो धर्म, प्रकृति अर्थात एनवायरमेंट और रीति रिवाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। देवी और सज्जनों, हम आप पहुंचे हैं आज के हमारे इस सत्संग के अंत में। अंत में सुनते हैं आरती और आरती के बाद शांतिपाद बहनों के संग।

0: रसधारा।
1: सो इसी के साथ ही आज का हमारा राम रसधारा ये प्रोग्राम, ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होने को चला। चलते चलते स्टूडियो में उपस्थित तीन बहनों को हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। बहन मारा जी को, बहन शिवानी जी को और बहन सीता जी को कोटि कोटि धन्यवाद। देवी और सजनों, अगले गुरुवार की शाम को फिर से मिलते हैं श्री राम जी के दरबार में। अंत में समाप्ति मंत्र और शांति पाठ तीन बहनों के साथ। जय सियाराम, जय जय हनुमान,
2: जय सियाराम।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening.

0: घड़ी मिला लीजिए, शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। 60 दिनों के लिए प्रभावी ये होगा। मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने की घोषणा के साथ जहां तेल की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्दी खत्म होगा। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वेसाई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों के साथ रात्रि भोज से ठीक पहले अमेरिका और ईरान के बीच तय हुए शांति समझौते की एक प्रथम प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब से 60 दिनों के लिए प्रभावी होगा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि व्यावहारिक रूप से इस समझौता जापान पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज ज्ञापन पर हस्ताक्षर का अर्थ है होर्मुज जल मार्ग तुरंत खोल दिया जाएगा और ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी हटा दी जाएगी। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
1: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात वेसाई में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों के साथ रात्रि भोज से पहले अमेरिका और ईरान के बीच तय MOU की एक प्रति पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता 14 बिंदुओं पर आधारित है। अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना शुरू करेगा जो 30 दिनों के भीतर पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और इसके बाद इलाके से अपनी सेनाओं को वापस बुलाएगा। ईरान ने 60 दिनों तक होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को निःशुल्क और सुरक्षित मार्ग प्रदान करने का वादा किया है। तेहरान ने प्रतिबंधों को हटाने के बदले अपने समृद्ध यूरेनियम भंडार को घटाने तथा परमाणु हथियार विकसित न करने का भी आश्वासन दिया।
2: Reopening the Strait of Hormuz and preventing Iran from ever obtaining a nuclear weapon. That's what it was all about.
1: नेटो के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि होर्मुज जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता की बहाली एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है।
3: The restoration of free passage through the Strait of Hormuz will be a massive step forward.
1: समझौते में ईरानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए $300 बिलियन की योजना भी शामिल है जो अमेरिका और उसके साझेदारों द्वारा समर्थित होगी, बशर्ते कि परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौता तय हो जाए। वाशिंगटन का कहना है कि ईरान को अपना तेल बेचने की अनुमति होगी। इस समझौते को अंततः संयुक्त राष्ट्र परिषद के एक बाध्यकारी प्रस्ताव द्वारा मंजूरी दी जाएगी।
0: मध्य पूर्व में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन स्थिति के सामान्य पर लौटने में अभी महीने लग सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर इसका प्रभाव जल्द खत्म नहीं होगा। इस बीच मॉरिशन कंपनियों को फ्रेट लागत में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है जो प्रति कंटेनर $1,100 तक पहुंच गई है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
4: 1950 के वर्षों से

0: खाद्य पदार्थों के सप्लायर अजलिस उन मॉरिशन कंपनियों में शामिल जिन्हें मध्य पूर्व में चल रही लड़ाई के परिणामों का सीधा असर झेलना पड़ा है। अजलिस कंपनी लिमिटेड के सीईओ शारन रामदिनी ने कहा, फॉरेस्ट के लिए फ्रेट में 35% की वृद्धि, भारत के लिए 40% की बढ़ोतरी, और चूंकि दुबई के लिए वहां बंदरगाह बंद है, हमें ओमान से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे में 100% पूरी तरह से बढ़ोतरी, लेकिन साथ में ये भी देख रहे हैं कि सभी स्तरों पर वृद्धि दर्ज की जा रही है। आज डॉलर बढ़ता जा रहा है। 70 वर्षों से स्थापित अजलिस ने दुनिया भर में सप्लायरों के लिए एक महत्वपूर्ण नेटवर्क कायम किया है। इस संबंध की बदौलत उसे कुछ लाभ भी हुए हैं। डॉक्टर शारन रामदिनी ने आगे बताया, पहले तो हम सप्लायरों के साथ भारी समझौता बातचीत करते हैं, साथ में ये सप्लायर केवल सप्लायर ही नहीं है, सहयोगी भी हैं। हम उन्हें मना पाते हैं कि फ्रेट खर्च बांटने के लिए, साथ ही एवरेज कॉस्टिंग कर रहे हैं पुराने स्टॉक को लेकर, शुरुआत में खर्च के बोझ को संभालने के लिए ये पहले कदम है, लेकिन इसके साथ साथ बचाव कदमों के लिए भी वैश्विक प्रवृत्ति जानते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक एवं जियोपॉलिटिकल हैं, ऐसे में संबंधित कदम उठाए जा रहे हैं, भारी संख्या में सामान खरीद रहे हैं, खर्च बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां तक हो सके यही कोशिश कर रहे हैं कि इसे ज़्यादा बढ़ने से रोक सके। विश्व व्यवसाय के चलते कस्टम कई प्रकार की स्थितियों का सामना कर रहा है। लड़ाई के कारण गतिविधि सेक्टर में काफ़ी अनिश्चितताएं उत्पन्न हुई हैं, फ्रेट काफ़ी बढ़ गया है और साथ में समुद्री परिवहन खर्च भी। कस्टम हाउस ब्रोकर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अफजल दिलबार ने कहा,
1: Dans les frais maritimes, il y a un peak season aussi.
0: समुद्री फ्रेट में भी पीक सीजन है, लो सीजन भी है। कभी कभी $900 में कंटेनर मिल जाता था, $1,200 में भी पहले हम समझौता बातचीत कर पाते थे जब बल्क पर कर रहे थे। एक कंप्यूटर सिस्टम है, अतः या तो इसे ले लें या फिर छोड़ दें। हिंद महासागर के टापुओं को $2,700 से $3,800 $20 प्रति कंटेनर के लिए, जब लड़ाई होती है तो जहाज के लिए, कर्मचारियों के लिए, सामानों के लिए इंश्योरेंस की मांग की जाती है। अब कुछ बीमा कंपनी ये तय करते हैं कि किन इलाकों से नहीं गुजरना चाहिए। दूसरी बात, जहाज़ों को अपना मार्ग ही बदलना पड़ता है, मतलब ज़्यादा लंबा रास्ता, ज़्यादा खर्च। 100 दिनों से अधिक समय की लड़ाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौते से तेल के दाम में थोड़ी स्थिरता आई है, लेकिन लड़ाई से पहले वाली स्थिति के लौटने में कई महीने लग जाएंगे। अफजल दिलबार ने आगे बताया, देखते हैं कि कहीं लड़ाई हो रही है तो दूसरी तरफ सब कुछ ठीक है। शुरुआत में ऐसा होता है, मामला इतना आसान नहीं है, ये वैश्विक मुद्दा है, क्योंकि समुद्री कंपनियां केवल इन मार्गों पर काम नहीं करती हैं, अन्य मार्गों से भी गुजरती हैं, काम करते हैं। जब मांग ज्यादा है, जगह कम है, तब फ्रेट प्रभावित होता है। अगर युद्ध खत्म भी हुआ तो हमारे विचार से 3-4 या 5-6 महीने में समुद्री क्षेत्र में कुछ स्थिरता आएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के बाद से दुनिया भर में पेट्रोल के दाम में अस्थिरता आती रही है। पिछले सोमवार को ईरान के साथ तय औपचारिक समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से पेट्रोल सप्लाई और ईंधन के दामों पर अच्छा प्रभाव तो पड़ा ही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने सचेत किया है कि युद्धविराम के लिए जरूरी शर्तें रखी जाती हैं, लेकिन मंडियों में संतुलन की तीव्र वापसी के लिए ये पर्याप्त नहीं है।
2: जल संकट के बीच कौवाश व्यवसाय के लिए नई पाबंदियां लागू हो रही हैं। सरकार पानी के उपयोग को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के वास्ते ज़रूरी कदम उठा रही है। वहीं इस क्षेत्र के संचालक ड्राई वाश और बारिश के पानी के उपयोग जैसे विकल्प अपनाते जा रहे हैं। सुनिए,
3: देश भर में कौवाश के लिए हर महीने 14,000 क्यूबिक मीटर से अधिक पानी की खपत होती है। वर्तमान में इस सेक्टर में 257 कंपनियां संलग्न हैं। इनमें पूजा सिवदत्त भी शामिल हैं, जो अपॉइंटमेंट पर कौवाश सेवा प्रदान करती हैं। पानी की उपलब्धता से जुड़ी कठिनाइयों को देखते हुए उन्होंने एक वैकल्पिक समाधान अपनाया है, बारिश के पानी को इकट्ठा कर दैनिक कार्यों में उपयोग करना। CWA के बजाय बारिश के पानी का उपयोग करते हैं, भाप का भी उपयोग करते हैं। यदि बारिश न हो, पानी न मिले,

0: प्रणाली का उपयोग करते हैं।
1: De l'eau qui nous peut accumuler pendant la pluie peut tomber qui nous pas faire gaspillage avec.
0: इस पहल की बदौलत वो अपनी जलापूर्ति की निर्भरता को लगभग आधा कम करने में सफल रही हैं। बारिश के जमा पानी के लिए 20 लीटर गाड़ी पीछे उपयोग करते हैं। यदि भाप का उपयोग करें तो कम पानी, CW के पानी के लिए गाड़ी पीछे 40 से 45 लीटर का उपयोग करते हैं। प्रयासों के बावजूद स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पिछले महीनों में कम वर्षा के कारण देश में जलापूर्ति पर दबाव बढ़ गया है, जिससे ये क्षेत्र
2: अब खबर फीफा विश्व कप 2026 से जुड़ी है। ग्रुप एल में कल इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच एक शानदार मैच खेला गया। इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 4-2 के स्कोर से हराया। हैरी केन, जूड बेलिंगम और मार्कस राशफोर्ड ने इंग्लैंड के लिए गोल किए। और इस शुक्रवार शाम को 2026 विश्व कप में 4 मैचों के साथ एक और रोमांचक रात की उम्मीद। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टूर्नामेंट में अपनी मजबूत शुरुआत बरकरार रखने की कोशिश करेगा, जबकि मोरक्को स्कॉटलैंड के खिलाफ अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने का प्रयास करेगा। जरा विस्तार रिपोर्ट में।
3: शुरुआती मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुरत यकीम की टीम स्विस टीम अब हर हाल में वापसी करने के इरादे से उतरेगी, लेकिन उनके सामने होगी एक बेहद जिद्दी और मजबूत बोस्नियाई टीम। दोनों ही टीमें अपने पहले मैच में ड्रॉ खेलकर यहां पहुंची हैं, इसीलिए ग्रुप बी का यह मुकाबला दोनों के लिए करो या मरो जैसा हो गया है। अगर स्विस टीम को इस बार किसी बड़े उलटफेर या बड़ी गलती से बचना है तो उनके फॉरवर्ड को अटैक में अपनी धार और तेज करनी होगी। कनाडा के वैंकूवर शहर में सब मेजबान को होस्ट कनाडा की टीम अपनी घरेलू फैंस के सामने कतर के खिलाफ मैदान में उतरेगा। कतर ने अपने पिछले मैच में स्विट्जरलैंड को ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था, जबकि कनाडा भी बोस्निया के खिलाफ ड्रॉ खेलकर आया है। इस लिहाज से यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद स्ट्रैटेजिक बन चुका है। होम मैदान पर खेल रही कनाडा की टीम को आज फेवरेट माना जा रहा है। उन्हें मैच में शुरू से ही दबदबा बनाना होगा, तेज रफ्तार फुटबॉल खेलनी होगी और विपक्षी टीम के साइड एरिया को पूरा इस्तेमाल करना होगा। दूसरी ओर कतर की नजरें मजबूत डिफेंस और तेज काउंटर अटैक पर टिकी होगी, ताकि वो कनाडा की टीम के डिफेंस की कमजोरियों का फायदा उठा सके। आखिर में मेक्सिको और दक्षिण कोरिया के बीच होने वाला एक ऐतिहासिक मुकाबला है, जिसकी गवाह वर्ल्ड कप के इतिहास की दो सबसे अनुभवी टीमें बनने जा रही हैं। ग्रुप ए का यह समीकरण बेहद कड़ा और दिलचस्प हो चुका है। दोनों ही टीमें अपने अपने पहले मुकाबले जीतकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मैदान में कदम रख रही हैं। मेक्सिको टीम को आज अपने फैंस के जबरदस्त सपोर्ट का फायदा मिलेगा। मैच की आक्रामक शुरुआत, हाई इंटेंसिटी गेम प्ले और रफ्तार को अचानक बदलने की काबिलियत ही आज मेक्सिको का सबसे बड़ा हथियार होगा, लेकिन उन्हें दक्षिण कोरिया जैसी बेहद अनुशासित और सेट टीम के खिलाफ फूंक फूंक कर खेलना होगा। दक्षिण कोरिया की टीम भी पिछला मैच जीतकर आ रही है और उनकी बेहतरीन टैक्टिक्स और टीम कॉम्बिनेशन आज मेक्सिको की असली परीक्षा लेगा।
2: विदेशी खबरों में, यूरोप के अपने दौरे के अंतिम चरण में भारत के प्रधानमंत्री पेरिस में हैं। वे वहां लगने वाले वीवा टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। आज उन्होंने वहां के वरिष्ठ व्यवसायिकों और सीईओस के साथ बैठक लगाई। जरा विस्तार से रिपोर्ट में।
4: यूरोप के औपचारिक दौरे के अंतिम चरण पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल पेरिस पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने एवियन में लगे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, जहां भारत एक अतिथि देश की तरह आमंत्रित किया गया था। पेरिस में आज भारतीय प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ फ्रांसीसी व्यवसायियों, निवेशकों और कंपनी सीईओज के साथ बैठक लगाई। उन्होंने वरिष्ठ यूरोपीय कंपनी मिस्ट्रल AI के CEO ऑटर मेंश के साथ एक कार्य सत्र में भाग लिया, मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार तथा जिम्मेदार AI प्रशासन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी जी ने फ्रांस के साथ आर्थिक

0: साझेदारी और मजबूत करने की भारतीय सरकार की कटिबद्धता जाहिर की। फ्रांस में बसे भारतीय डायस्पोरा के लोग मोदी जी के होटल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने लोगों से भेंट करके खुशी जताई और भारत तथा फ्रांस के बीच बेहतरीन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए डायस्पोरा का आभार प्रकट किया। इस दौरे के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बादल घिराएंगे, हल्की बारिश हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16 और अधिकतम 24 से 26, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:44 पर, शाम को सूर्यास्त 5:38 पर होगा।

0: देश विदेश की इन खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग तकनीकी पर लुडोविक का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: शोक समाचार सुनिए। रॉयरोड पेची त्रिविया में पैंसठ साल के 65 ईयर्स ओल्ड के श्री सुरेंद्र अपादू जो बेबी के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले 198 कैप्यूसिन स्ट्रीट को होम मॉडल रहा करते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे रॉयल रोड पेची त्रिविया से मोगा फ्यूनरल्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शबेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। पोंकुलविल सावान रोड नोवेल फ्रांस में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड के श्री दुष्यंत सुकन जो विनोद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे कुणाल कुमार सुकन के मकान पोंकुलविल सावान रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजिन नोवेल फ्रांस की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। माइकल लील सेमोटेमे 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती एंतामा दालिवादू पैदाशी नाम अचादू और जो सूर्या के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके मकान माइकल लील सेमोते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेमोते बेलोम्ब की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: अपने घर ही मिला लीजिए, इस वक्त शाम के ठीक 6:19 हो गए हैं।
5: RM3 Radio.

0: जी मैं एक सीटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सीटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सीटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सीटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सीटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सीटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सीटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर द कूलेस्ट वन।
2: You're listening to RM3 Radio.

गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार और आदाब। नई सोच कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हैं जी?

मुझे पता है आप बहुत ही बिजी हैं, आप अलग अलग जगह पर हैं इस वक्त। कुछ ऐसे लोग हैं जो काम से निकलकर घर की ओर जा रही हैं। अच्छा, वो बाज भी मार रही हैं। इट्स ओके यार, मुझे पता है आप बहुत ही जल्दी सुबह उठ कर के घर का काम काज निपटाने के बाद, बच्चों के टिफ़िन बनाने के बाद, तब आप ऑफिस गए। अब आप सोच रहे हैं घर वापस जाने के बाद मैं क्या बनाऊंगी या फिर क्या बनाऊंगा या किस तरह से मैं अपनी वाइफ की मदद करूंगा। इट्स ओके,

यही जिंदगी है। लेकिन उन सभी छोटी छोटी बातों को अगर उसको बहुत ही प्यार के साथ संजो करके रखोगे तो एक अलग तरह का एक माहौल बन जाएगा आपके अपने घर पर। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जब जो आंटी होती है, जो दीदी होती है, जब वो वापस घर आती है, सबसे पहले वो करते क्या है? वो निकल जाते हैं अपने काम को लेकर के, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कभी कभी तो सुबह वे लोग जो दाल है ना या फिर चावल है ना उसको भिगो करके रख देते हैं ताकि जब वो वापस आएंगे ना तो कुछ ना कुछ पकाने में और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इस वक्त रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए हैं। अभी आपका साथ देगा यहाँ पर रात के 9 बजे तक। इसका मतलब ये है कि नई सोच कार्यक्रम रात के 7 बजे तक, फिर उसके बाद रात के 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक आप सुनेंगे दिलों की आवाज़ कार्यक्रम। जब हम घर वापस आते हैं ना तो बॉस की जो बातें हैं या फिर बस की जो धक्के हैं उसको उस दिन सब का सामना करते हुए तब जब वापस आते हैं ना, तब उसके बाद एक सुकून मिलता है। और जब आप लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं कहते हैं अरे यार अभी ये म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू इसके लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप हमारे हम कदम बन करके आगे बढ़ते जा रही है।

0: दोस्तों इस वक्त रात के 7:15 बज चुके हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि दुआओं में बहुत असर होता है। दुआओं के बल पर एक इंसान, खासकर एक पाखंड राजा के सिंहासन भी धराशाही हो सकता है। दुआओं के बल पर एक फकीर भी महाराजा बन सकता है। इसीलिए जितना हो सके आप अपनी जिंदगी में दुआओं को बटोर के रखा करो, और दुआओं को बटोरने के लिए आपके अंदर में पाए जाने वाले जो ईगो है, जो अहम की जो भावना है, इसको आप हटा दीजिए। इससे आपकी जिंदगी और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। दूसरों के साथ इतनी ज्यादा माथापच्ची या फिर बहस करने की जरूरत नहीं है। जब आपने एक इंसान को, सामने वाले को समझाया कि 2+2=4, वो समझ नहीं पा रहा है, आपने दूसरी बार उसको फिर से समझाने की पूरी कोशिश की, मेरे भाई मेरे दोस्त 2+2=4, वो कह रहे हैं कि 2+2=5, और वो अपनी बात को मेंटेन कर रही है, तो तीसरी बार आप उनको कहना, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहस करने की जरूरत नहीं है। इससे आप लोगों, आपके जो मन की जो शांति है वो बरकरार रहेंगे, और साथ ही साथ आपका मूड भी खराब नहीं होगा, तो इट्स ओके, फाइन। तो चलिए अगला गीत उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जिनको लगता है कि जिंदगी में ईगो जरूरी नहीं है।
1: RM3 Radio.

जान दोस्तों, मेहनत करते जाइए। अगर आप लोग हमारे साथ स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं तो एक मुस्कान के साथ भी आप इस गाने को एंजॉय कीजिए। एंड लेट मी टेल यू कि इस गाने के बाद हम बढ़ेंगे दिलों की आवाज कार्यक्रम। यू मे साइन अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250620।

जो दोस्तों, यू आर करंटली लिसनिंग टू दिलों की आवाज अभी के साथ रात के 9 बजे तक वेटिंग फॉर यू ऑन 5250-6200 फॉर योर मैसेजेस, या आप हमें फोन कर सकते हैं ऑन 402-80-70 पर। एग्जैक्टली कौन सा गीत आप सुनना पसंद करेंगे उसको यहां पर हम चलाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जी।

बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि हम आपके लिए अनजान हैं, हालांकि आप मेरे लिए अनजान हैं, लेकिन हम दोनों के बीच का जो तार है वो है रेडियो का माध्यम। और रेडियो मनोरंजन एक ऐसी तार है जो हम दोनों की दिलों को जोड़ने में लगी हुई है। इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग देशों से बाई लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv वे लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। वी डू हैव विनय गोबिन फ्रॉम कनाडा, खासकर केबेक से हैं। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश की है, खासकर उनके लवली वाइफ गौरी के नाम, उनके दो बच्चे हैं सानवी और यतीश, साथ ही साथ उनकी प्यारी बहना है यहाँ पर, जैसे कि मीमी है, प्रार्थना है, गीता है, वी ओसो हैव केशिनी, वी ओसो हैव योगिता, साथ ही साथ है ममन्ना और उनके भाई रोशन के नाम वो अगला गीत डेडिकेट करना चाहते हैं। सो गाइस, इसी तरह से आप लोग साथ देते जाइए और ये जो रात है उसको और ज़्यादा रंगीन और खूबसूरत बनाने में हम लगे हुए हैं। हम यही आशा करते हैं आप जहाँ पर भी हो, जैसा भी हो, बस प्यार होना ज़रूरी है।

जी दोस्तों, आप ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही प्यार का जो लम्हा है उसको यहाँ पर बरकरार रख रही है। और चलिए, यहाँ पर रात के 7:26 हो गए हैं, सुदेवी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं फ्रॉम वाकवा। वो कह रहे हैं कि गुड इवनिंग, अभी एंजॉयिंग योर प्रोग्राम, प्लीज़ अगला गीत त्रियुली की दीदी ललिता और कुशल फैमिली के लिए हो जाए। वी ऑल्सो हैव भाई आत्माराम मानेगा के हैं, और जितने सारे राम रतन फैमिली और आपकी टीम के लिए भी अभिजीत का एक गीत हो जाए, मैं चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड हैव ए वंडरफुल नाइट। चलिए, ये गाना हाँ खासकर हम अनीता के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, जो फिकॉन फ्लैग के रहने वाली हैं। पति है राज, अंतिश, अंकुश, मनीषा, अशीमा, पोती है हिमेशा, आध्या और अंश।

और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे पूनम मोगन के नाम, जो इस वक्त हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड है बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv. हियर वी गो, दिस इज योर कमबैक इश्क, टेकन आउट फ्रॉम द मूवी प्यार तूने क्या किया, वेटिंग फॉर यू ऑन 5250 6200 फॉर योर मैसेजेस हैपनिंग राइट नाउ विद अभी.

दिस इज तमाशा फॉर यू टेक इट आउट फ्रॉम द मूवी तमाशा, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाजों में। और ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त निकल रही हैं काम से और जा रही हैं घर की ओर, थके हुए हैं, हारे हुए हैं, पस्त हुए हैं, लेकिन हमारे शो का एंजॉय कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक एक हल्की सी मुस्कान के साथ। हियर वी गो।

रात बाकी है और बात भी बाकी है और 19 यहाँ पर रात के 7:57 हो गए हैं। दिनों की आवाज़ कार्यक्रम हम यहाँ पर बरकरार रखते जा रही हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर अभी के साथ। और अगला गीत स्पेशली उन तमाम दोस्तों के नाम हम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त किचन में काफ़ी बिजी हैं।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त रात के ठीक 8 बजे हैं।

0: चलिए हम लोग पहुंच गए हैं सेकंड आवर ऑफ योर दिलों की आवाज कार्यक्रम अभी के साथ रात के 9 बजे तक। जहां दोस्तों इस वक्त रात के 8:06 हो गए हैं और ऐसे टाइम पर आप लोग हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं बाय लॉगिंग ऑन freew.mbcradio.tv। इसके लिए हम आपको शत शत प्रणाम और आदाब करते हैं। कैसे हैं जी? हम तो यहाँ पर फिट एंड फाइन हैं। थर्सडे की रात है और रात बाकी है और बात भी बाकी है और इसी टाइम पर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और इसी टाइम पर आप हो सकता है इस वक्त खा रहे हैं तो बोन अपेटिट, शुभाहार आपको, या फिर अगर आप किचन में बिजी हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में आप हमारे शो को एंजॉय कर रही हैं, इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ऐसे भी लोग हैं जो इंतजार में लगे हुए हैं वर्ल्ड कप 2026 के नेक्स्ट मैच देखने के लिए। अब आप मुझे मैसेज भेज करके बता सकते हैं आप किसको, कौन से टीम को आप सपोर्ट कर रही हैं, उसको हम यहाँ पर बताएंगे जी। सो यू मे सेंड अस मैसेजेस हैपनिंग ऑन 5250620, या फिर आप हमें फोन कर सकते हैं 4028070 पर 4028070।
1: RM3 Radio।
0: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये कहा करते हैं, अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा क्या होता कालिया।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: चलिए आप लोगों की तन्हाई को दूर भगाने का सॉलिड आइडिया अभी के साथ तो है ही जी। दिस इज सिलसिला। यस दोस्तों, मैं और मेरी तन्हाई।

है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: RM3 Radio. Radio.
1: चलिए इस वक्त हमारे साथ फौजी साक से उमा भी जुड़ गई हैं। उमा नमस्ते जी, कैसे हैं जी? ये गाना खासकर आपके नाम और आपके सभी परिवार के सदस्यों के नाम।

0: RM3 Radio.
1: ये गाना खासकर हम डेडिकेट करना चाहेंगे स्पेशली रीटा किसुंदियाल के नाम, और उनके पति हैं अजय, उनकी दो बेटे हैं व्योम और अखिल, सभी किसुंदियाल फैमिली ऑफ रिजबेला।

0: जी दोस्तों, आप लोग यहाँ पर हैं मुझे पता है, इसलिए इतने सारे मैसेजेस मिल रही हैं। अगला गीत स्पेशली हम अजय लोखन के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे। उनके लवली वाइफ है नीता, वी ऑल्सो हैव दो बच्चे अहान और आयुष। और आयुष इस साल उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग साल इसलिए क्योंकि वो ग्रेड 13 के एग्ज़ाम देने वाले हैं, सो बहुत ही बिजी हैं अपने होमवर्क को लेकर के। और साथ ही साथ वी डू हैव संगीता जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये गाना खासकर हम आशना और हांस के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे, विदाउट फॉरगेटिंग विदाशा। पूर्णिमा और अविनाश भी हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ विद्या हमारे साथ जुड़ गई हैं फ्रॉम लालमाटी। लालमाटी से हैं विद्या, उन्होंने कहा कि अगला गीत उनके पति के लिए हो जाए जिनका नाम है विराज। ये गाना उन तमाम दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस वक्त नाइट पे काम कर रहे हैं। मुझे पता है नाशिफ पे काम करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन क्या करें, मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। और यहाँ पर वी डू हैव जी हाँ फिनिक्स से हैं रेहाना हमारे साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। जियाद के नाम अगला गीत वो डेडिकेट करना चाहती हैं। वी ऑल्सो हैव जालिला और सभी सुनने वालों के नाम।
1: ला ला ला। The first time I saw you, I knew you were the one. When you're with me, I feel so free. You're my dream come true. I don't wanna live my life without you.

अलग तरह की उम्मीद मिलती है आगे बढ़ने के लिए। क्या आप कभी गिरे हैं एकदम धराम से? जी हाँ दोस्तों, मैं गिरा हूं। कभी कभी जब हम लोग बड़े होकर हो जाने के बाद एक पब्लिक जगह पर, चाहे एयरपोर्ट में हो या बाजार में या फिर सब्जी मंडी में, वहां पर अगर आप गिर गए हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप इधर उधर चेक करेंगे कि किसी ने देखा तो नहीं। इट्स ओके, अगर आप गिर गए हैं सो गिर गए हैं, ये शर्मिंदगी वाली बात कैसे आ जाती है? उसी तरह से जिंदगी में अगर आप कभी गिरे हैं, अगर आपने कोई बड़ी गलती की है, तो खुद को एक दूसरा मौका दीजिए। ये जो मौका है, एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आप खुद एक सेल्फ अप्रेजल करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक आत्मविश्लेषण, और उसी सेल्फ अप्रेजल के दरमियान आप प्लानिंग कीजिए कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। जिस तरह से एक इंसान जब जिम में जाता है तो जिम में 2 घंटे तक अपने आप को तोड़ता है, मरोड़ता है, लगड़ता है, तब जाकर के वो वहां से निकलता है, एक सुकून मिलता है, एक जो मी टाइम का जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो महसूस होता है। तो व्हाई नॉट ग्रूमिंग योरसेल्फ, अपने आप को बेहतर बनाइए।

अभी के लिए हम लोग प्यार की जो बातें हैं उसको मेंटेन करते जा रही हैं, लेकिन जो आने वाला जो गीत है वो छोटी के नाम डेडिकेट करेंगे जो पनौजे के रहने वाली हैं।

दोस्तों इस टाइम फॉर यू साइन ऑफ नाउ. मैं ये सोच रहा हूँ, ये जब हर थर्सडे की रात जब मैं आ जाता हूँ, हम म्यूजिक में इस हद तक डूब जाते हैं कि हम लोग एक्चुअली भूल जाते हैं कि हम लोगों को जाना भी है. 21 जून को हम लोग म्यूजिक डे मनाने वाले हैं, और जितने सारे जो म्यूजिक लवर्स हैं, इन एडवांस हम आपको कहना चाहते हैं संगीत दिवस की मंगल कामना. हमेशा संगीत के साथ जुड़े रहिए, ये एक बहुत ही अच्छा थेरापी है स्ट्रेस को दूर भगाने का. इसी तरह से आप रेडियो मनोरंजन की लहरों पर रहते जाइए, बहते जाइए, सुनते जाइए. और अभी को दीजिए अनुमति, हम मिलेंगे फिर से. तब तक नमस्कार और आदर.

0: 95.6 East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music all day, all night.
3: NBC TV programs ki jhalkiyan.
4: Isko mujhse koi nahi chhin sakta. Koi nahi chhin sakta isko mujhse.
5: बाबूजी चले गए, ये घर भी चला गया और अब तुम भी जा रही हो।
4: काका अपने घर को छोड़ के जाने का किसका दिल करता है, लेकिन जब ये घर ही नहीं रहा तो
6: आप जो मेरे नील न होते।
7: रविवार 21 जून को म्यूजिक डे के उपलक्ष में NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म गीत 1992 की ये मूवी दिव्या भारती और अविनाश वधावन पर फिल्माई गई गीत।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: सर ये गाड़ी आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते सर।
2: ओए कूल इट ब्रदर है।
1: अरे सुनिए
3: हाउडी सर।
2: सब भला चंगा है ना मैम?
4: अजी सब चंगा ही चंगा है सर। मीट सैम हिंदुस्तान पहला जलंधरी काउबॉय।
2: हाउडी।
5: जब से ये आपकी गाड़ी चलाते हैं आपको घोड़े पे बैठने की ख्वाहिश तो नहीं होती होगी?
2: होगी कैसे जी, वेन पंजाबी ड्राइव द गड्डी फ्लाई।
0: रविवार 21 जून को MBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म जिंदगी।

0: भोजपुरी के धमाल, भोजपुरी तड़का, आज की रात किरण संगे।
1: आज के रात 18 जून 2026 के ये बखत ठीक 9:02 होलबा और हम किरण आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत करत है। आप सब कोई के हमर सप्रेम नमस्ते। आशा करत है कि आज के दिन हमेशा की तरह आपके बहुत अच्छा से बीतल और जनते ही है जा कि आजकल वर्ल्ड कप के बुखार बहुत तेज से चढ़ ले जाता सब कोई के। हर घर में वर्ल्ड कप के जो वातावरण बा उछागल बा, लेकिन साथ साथ जे लोग भोजपुरी तड़का के दीवाना होवन जा उ लोग कैसे से कन जा हमनी के साथ छोड़े। तो चला आपके ही मनपसंद प्रोग्राम भोजपुरी तड़का एक बार फिर सजा के आल है जा आपके मनपसंद कलाकार संतोष महादेव के आवाज़ में ये पहला गीत।

रात के 9:07 होलबा और आप लोग भारी संख्या में हमेशा के तरह साथ देवत हवा जा ई जान के बहुत खुशी होवत आ हमनी के जोन फोन आवेला अक्सर घर से आवेला जे लोग घरे सुनत हवन जा बीमार हवन जा दर्द में हवन जा ऐसन फोन अक्सर आवेला और ई जान के हमनी के खुशी होवेला कि आप लोग के ई जोन दुख के घड़ी बा एकर में आपके थोड़ा राहत मिलेला ई प्रोग्राम सुन के और ई बखत हमनी के फोन करलन आत्माराम जी बेलिया से जिनकर तबीयत आप में से बहुत के तरह उतना ठीक नहीं रहेला लेकिन आपके मन आपके जोन दिल बा ओके खुशी मिलेला जब आप लोग अच्छा अच्छा गीत अपनों के नाम करेला जा और ई भावना के साथ आत्माराम जी अपन चार गो बहिन जिनकर नाम अक्सर चलते रहेला सुदेवी ललिता प्रभावती और छोटी के नाम ई अगला गीत करत हवन स्वर्गीय ज्ञान महिपतलाल के आवाज़ में और ई गीत के शौकीन हवन बॉशेरी के धनी जी भी त चला आप दोनों जना के मनपसंद गीत बदरिया घिर घिराए बहुत सुंदर गीत आप सब कोई के नाम

ज्ञान मोहिपतला के आवाज के बाद जन अगला गीत चली ये गीत है हमने के देश के एगो जानल नाम बहार गौरी के आवाज में और इनकर आवाज में काफी सुंदर सुंदर भोजपुरी गीत बा लेकिन सबसे मशहूर जन हमने के प्रोग्राम में बा वो है शादी के गीत शादी से जुड़ल गीत मामा पापा और अगवा के लेके ये गीत के फरमाइश करत हवन विजय बेनी प्रसाद और आप सब बेनी प्रसाद परिवार के नाम सब दुली परिवार के नाम मोहताबा से और अपन दोस्त शास्त्री बनुमाली के नाम ये गीत करत हवा उधर हमने के सुनत हवन अमृता गणेश पीतों से आप सोनिया और परी और पूरा परिवार के नाम ये गीत सुने चाहत हवा और विजय बेनी प्रसाद जी बोलत हवन कि ये बखत वो काम में हवन और काम में समय बितावे के रात के बखत ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है ये प्रोग्राम के आपके इंतज़ार रहेला तो ये जान के खुशी होवेला कि हमने के भी इंतज़ार रहेला जैसे कि आप लोग से बात करे के आप लोग खातिर ये सब गीत चलावे के इंतज़ार

प्यार हमके रहेला तो चला प्यार के साथ आप सब कोई के नाम ये अगला गीत मामा और पापा और अगवा के लेके और ये गीत के बाद बहुत जल्द देखब जाके एक दुगो शादी के गीत भी चली कहे कि अगवा के काम जैसे शुरू होवेला तो चाहे शादी की भी तैयारी शुरू करे के।

अभी घड़ी पर एक बहुत खूबसूरत जो नंबर बा उलौकता और वह 21:21 मतलब कि 9:21 और आप सब कोई के एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग काम में से आराम करते हुए लेटे लेटे

0: शरद में खुशी में पूजा पाठ से लौटते हुए या फिर उधर फुटबॉल खेलता था हुआ से निकल के आके फ़ोन करा था वजह और ई प्यार खातिर ई साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया हमने के भी बुझाए कि ई प्रोग्राम चलता तो आप जैसन वफादार श्रोता ई महफिल में बैठल हवा जा और अगला जो गीत बा चीनी के खेतवा सुनीता ननकू के आवाज़ में ये गीत सुने चाहत हवन शोभाजी शोभाजी ये गीत बोलत हवन की ख़ास तौर पर हमार नाम करत हवन और बोलत हवन जे गीत चलावेला चाहे उनकर नाम सबसे आगे लेवे के बहुत बहुत शुक्रिया शोभाजी और आप अपन सब सखी सहेली के नाम और साथ में जितना कोई भी ई बखत ई प्रोग्राम के साथ जुड़ल हवा जा आप सब कोई के नाम ये अगला गीत करत हवन और आज रात के देखत है जाके कहीं कहीं हल्का बारिश हुआ था तो कहीं कहीं चाँद बहुत सुंदर रूप से थोड़ा घड़ी आगे खिलल रहल सुंदर चाँद नवा चाँद और उधर तिरंगन भी बहुत सुंदर रूप से झलकता सुंदर आसमान में और तापमान थोड़ा घट गल बा थोड़ा जस्ती ठंडा करा था आज के रात और ऐसा तापमान जब बहुत गर्मी के बाद आवेला तो सच में बहुत मज़ा आवेला तो चला इस सुहाना रात ये सुहाना जो ठंडा ठंडा हवा चला था और सुंदर सुंदर गीत चला था और आप जैसन श्रोता के संगे जो महफिल सजाता संगे ये सब के मिलावब जा तो एकर से बढ़िया और का रही
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे

0: का किरण संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
4: और कहाँ जाऊँगा, यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए।
5: क्यों देते हो अपने आप को ये सजा?
4: क्योंकि रोज बैठी है इस दिल में जज्बात की।

शनिवार 20 जून को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे म्यूजिक डे के ईव पर आप देख पाएंगे हिंदी फीचर फिल्म देवदास। 2002 की ये मूवी शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माई गई देवदास।

प्रसंगे। रात के 9:30 होलबा और जे ई बखत आप बीच सीमा में चलत हवा, गाड़ी चलावत हवा या फिर सफर में निकलल हवा और बीच सीमा में आपके पुलिस लॉ की तो आपके ई बात के ख्याल चाहिए रखे के कि घबराए के कोई बात नहीं बा, कहे कि आप सब कुछ ठीक ठाक गाड़ी के जितना भी नियम बा कर पालन करते हुए गाड़ी में सफ़र करत हवा। आजकल दिखत है जा कि ढेर कुछ सुने के मिलता सड़क पर, तो पूरा सावधानी के साथ आगे निकला और रतन हरी के ई गीत नहीं भूलैया।

रात के 9:35 होलबा और आप सुनत हवा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम जो 9 से शुरू होलबा और रात के 11 तक चलते रही आपके ही मनपसंद प्रोग्राम आपके ही मनपसंद चैनल रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर और आप सब कोई के फरमाइश एक के बाद एक पूरा हो ले जाता जितना भी गीत चलता सब आप ही लोग के फरमाइश पर आप ही लोग के पसंद पर और हमने के अपन मॉरिशन कलाकार लोग के आवाज़ में चलता अगला जो गीत चली किशोर खिमिया के आवाज़ में देश के अगला जानल मानल कलाकार और इनकर जो सबसे मशहूर गीत आजकल चलता जलसा लालबा ई गीत के फरमाइश ढेर कोई कर ले हवन जा और ख़ास तौर पर ई फरमाइश आवता

शीला जी के ओर से आप ये गीत अपन पतिदेव के साथ सुने चाहत हवा सुरेन, और आप लोग इन दिनों छुट्टी पर हवा जा मॉरिशस में, और अपन पूरा परिवार से मिलाप के खताल बा मिलते हवा जा और मिले के बा, और ऐसन में जब मॉरिशस आई बा विदेश से त उ जलसाही के बखत रहेला। तो चला शीला के पसंद पर ये गीत उनकर सब लड़का लोग के नाम, सब नाती पोता के नाम, बेटी दामाद के नाम और पूरा परिवार के नाम।

0: मन संगे।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your morning radio station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: कमला जी आप चली क्यों आई? क्या बात है?
5: अमृत जी, गिरती हुई दीवार को सहारा मत दीजिए। इस सभागन का कभी किसी ने साथ नहीं दिया। पति मझदार में छोड़कर चले गए, औलाद औलाद ने तो डुबो ही दिया। आज इस शरीर भी साथ छोड़ना चाहता है।
6: दुनिया में कितना हम हैं।
0: शुक्रवार 19 जून को एमबीसी 4 पर दिन के 3:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म अमृत 1986 की मूवी राजेश खन्ना और स्मिता पाटिल पर फिल्माई गई अमृत।

आशीष रामफल के आवाज में बहुत ही मॉडर्न तरीका से बनावल बहुत ही सुंदर ढंग से सजावल जन गीत चलल अब ओकर बाद एगो पुराना झूमर सुनब जा एगो एवरग्रीन आवाज सत्यम गणपत के आवाज जोन अभी गूंजता सत्यम गणपत जे एगो गिथारिन हवन और साथ में एगो बहुत ही अच्छा कलाकार हवन तो चला इनका आवाज में एगो पुराना लेकिन बहुत ही मशहूर झूमर सुनी जा

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: MBC TV programs की झलकियाँ.
4: ये मेरे डैडी का घर है. इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता. कोई नहीं छीन सकता इसको मुझसे.
5: बाबूजी चले गए. ये घर भी चला गया. और अब तुम भी जा रही हो.
4: काका अपने घर को छोड़.

0: करके जाने का किसका दिल करता है, लेकिन जब ये कर ही नहीं रहा तो
1: आप जो मेरे
2: रविवार 21 जून को म्यूजिक डे के उपलक्ष में NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म गीत 1992 की ये मूवी दिव्या भारती और अविनाश वधावन पर फिल्माई गई गीत।

0: सी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: एक बार ये हमारा गाना सुनेंगे ना तो एक और सूप ऑर्डर करेंगे।
2: देखो उस गाने के बारे में सोचो जो तुम्हें कल गाना है।
3: जान लूंगी लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर करना।
2: रक्षा आजकल तो सब इन्हीं के गाने सुन रहे हैं और मुझे पता भी नहीं था कि हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया है।

0: ऑटोग्राफ।
1: ओह माय गॉड,
2: किस्मत वाले हो यार, बीवी हो तो ऐसे।
1: हर आदमी पहली बार कहीं ना कहीं शुरुआत करता है, किसी ना किसी की मदद लेता है।
3: अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मदद।
4: शनिवार 20 जून को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म दिल विल प्यार व्यार 2002 की ये मूवी आर माधवन और जिमी शेरगिल पर फिल्माई गई दिल विल प्यार व्यार।

भोजपुरी तड़का किरण संगे। देखते देखते एक घंटा पूरा हो गया और अभी 10:04 होल बा और अगला गीत जन चली उ ललिता जी के फरमाइश पर और ललिता जी सुने चाहत हवन विनोद शिवदत्त के आवाज़ में भोजपुरी भाषा बाप दादा के बोली हा और ये गीत आप अपन दीदी छोटी प्रभावती आत्माराम भैया हरीश भैया सुकलाल मौसी माला राम जावन और अपन ननद जे ई बखत कनाडा में हवन कमला गुरबिन के नाम करत हवा और ई गीत जितना कोई खुशी रहेला जा कहे कि विनोद शिवदत्त के आवाज़ के फरमाइश ऐते रहेला अक्सर त आप सब कोई के नाम ई अगला

फुलवा फुले आधी रात गलवा के कर डालब। जब फूल की बात चलता तो हुआ पर हार के भी बात चलता, कहे कि आजकल शादी ब्याह के मौसम बा और ये बखत ढेर कोई गीत गवाए से लौटत हवन जा, ढेर कोई बोलत हवन जा कि इस सप्ताहांत के बरियात आई होला बा। और ऐसा एगो फरमाइश आल भा हमने के पॉपलेमुस से नहीं बल्कि फौजी साक से उमा जी बोलत हवन कि मोहन परिवार में दिमास के बेटी के बरियात आए के बा। और बेटी के जब बरियात आए तो चाहिए बरियात के ही एगो बढ़िया गीत सुनाए के। और आप सुने चाहत हवा अवध से अले बरतिया। और उमा जी, मोहन परिवार के हमने के ओर से शादी के बहुत बहुत शुभकामना। ये शादी बहुत अच्छा से बीती, सब परिवार हमेशा खुश रही। और सबसे जन ज़रूरी बात बा, जो नवा दंपति बा उ लोग के शादीशुदा जीवन हमेशा सुख से भरा रही। और शारदा सिन्हा के आवाज़ में आप ये गीत सुने चाहता हुआ। जब शारदा सिन्हा के आवाज़ के बात चला था तो अभी अभी बाशेरी से धनी जी भी फ़ोन कर लन और उबड़त हवन कि अभी अभी फुटबॉल समाप्त हो गल और स्कोर जाने के उत्सुकता हमके भी रहल। और बोलत हवन कि ये जो मैच चलल अभी चेकिया और साउथ अफ्रीका के बीच, ये मैच ड्रॉ रहल और जैसे मैच फिनी हो तो धनी जी फ़ोन कर लन। और देखते हैं जाके अब ढेर कोई फ़ोन करे लगलन जा, ख़ास तौर पर पुरुष लोग, कहे कि हमने के चाची दादी लोग जस्ती वो लोग रेडियो संगे रह लन जा। तो धनी जी आपके नाम भी ये अगला गीत शारदा सिन्हा के आवाज़ में आप एगो गीत सुने चाहता हुआ, बहुत ही सुंदर पारंपरिक गीत आप सब कोई के नाम।

0: इस शादी के गीत आप सब कोई के नाम जेकर घर परिवार में शादी के जो समा बा शादी के जो वातावरण बा उ चलता और शादी के जो बंधन में जो दुगो परिवार बंधे जाता दोनों परिवार के बहुत बहुत शुभकामना दोनों जो दंपत्ति बा दुल्हा दुल्हन अभी दुल्हा दुल्हन हवा जा लेकिन बाद में ये जो जीवन चाहे निभावे के ओकर में समझ बूझ और आदर सम्मान के बहुत ज़्यादा आवश्यकता रही और एक साथ चाहे संग चले के और ई जोन साथ रही एकर में कोनो दरार नहीं पड़ी ई बात के हमेशा ख्याल रखे के और हमेशा एक दूसरे के सहयोग देवे के और सबसे बड़ा बात चाहे एक जना के ई दोनों दंपत्ति में से तय करे के ई दोनों में से एक जना के चाहे देवे के भावना रखे के हमने खाली चाहिला जा पाए के चाहिला जा लेकिन दोनों जना जे मांगी त देवे होला त चाहे एक जना रहे के त अभी से तय कर ला कि हम सब कुछ देवब ई संबंध में और ऐसन भावना जब रखबा त उ चाहे कोनो भी संकट आए त आपके जारी ई फर्ज रही कि आप देबा तो संकट नहीं आए ऐसन में अब अगला जो गीत चली सोना नोयान के आवाज़ में ई गीत सुने चाहत हवन ई बखत जे हमने के सुनत हवन भाई अबू हमेशा के तरह हमने के साथ जुड़ल रहेलन और भाई अबू अभी उ भी फुटबॉल देख के आवत हवन जैसे बोल दी जो हमने के घर के पुरुष लोग हवन जा जो मर्द लोग हवन जा वो लोग जस्ती खास तौर पर आगे के समय के जो चचा दादा लोग हवन जा वो लोग फुटबॉल के साथ जुड़ल रहे लन जा जबकि हमने के माँ चाची दादी लोग वो लोग जस्ती रेडियो के साथ लेकिन आज के समय में वो छोकरा छोकरी औरत मर्द सब कोई फुटबॉल के शौकीन हवन जा और ऐसा में भाई अबू बोलत हवन कि देखते देखते वो फसगे हो गई लन टेलीविजन के सामने बैठल बैठल लेकिन फुटबॉल के ई जो बुखार बा वो चाहे तोहर देह में कितना दर्द हुई बैठ के वो आपके विवश कर देवेला तो खुशी के बाद बा कि जैसे फुटबॉल फिनी हुआ था तो आप लोग हमने के याद करा था वजह फ़ोन करा था वजह और अगला गीत खाले पीले ई अबू अफेज अयज जहीरा और भाई अबू के एगो बहुत ही ख़ास दोस्त हवन जिनकर नाम है आपी और उनकर बीवी के नाम और ख़ास तौर पर आज के रात भाई अबू जकीबा के नाम ई गीत करत हवन जकीबा जे उनकर भतीजी हवन और उनकरा वो बोलत हवन कि मामू अबू के दुआ उनकर पर हमेशा रही अल्लाह हमेशा उनकरा शिफा दियन और हमके उ समझेलन कि एकर मतलब भी का है त आपके दुआ आपके प्यार आपके परिवार आपके सगे संबंधी संगे हमेशा भर चलते रही भाई अबू ऐसन हमार शुभकामना बा त चला ई सुंदर गीत सब कोई के नाम जे सुना नोयान के बहुत बड़ा फैन हवा जा
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your morning radio station Zindagi ke anmol lamhe radio Mauritius ke saath

चिराई बोले चुक चुक ईगीत के फरमाइश कर ले हवन सुयाक से श्रीमती जी और श्रीमती जी अपन तीन गो बेटा तीन गो पतो अपन सब नाती पोता के नाम ईगीत चलावे चाहत हवन और उधर मोतायलोंग से गीता जी फोन कर लन बातचीत करे खातिर और बोला था वन कि बातचीत जितना गीत जरूरी है उतना आवाज में रस और मधुरता भी जरूरी है तो गीता जी आपके मधुर आवाज आपके मधुर बात खातिर बहुत बहुत शुक्रिया।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sangi.

देखते देखते एक घंटा आधा हो गया और आधा से कमती समय आधा घंटा से कमती समय हमने के संगे बा अगला जनगीत चली अनीता जी फ्लिक ऑफ लक से फ़ोन करके गीत के फरमाइश कर लन और अनीता जी बोला था उनकी बहुत ठंडा करता और जब ठंडा करेला तो चाहेला हाली से मरमिट में गरम पानी चढ़ावे के तो मरमिट में गरम पानी गीत संतोष महादेव के आवाज़ में अनीता जी आप सब कोई के नाम करत हवन और हमार नाम भी तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी संतोष महादेव के ये सुंदर गीत आप सब कोई के नाम

बखत हमने के व्हाट्सएप मैसेज भेजा था वन कैथोबोन से सरिता जी और आपके फरमाइश बा नीरज गुप्त मधु के आवाज में हेले साबुन हेले लुंडा और ये गीत पर भावती दादी के नाम भी जे अभी फोन करलन सोचा ये बखत भी हमने के दादी लोग हमने के दादा लोग सुना था वन

काहे कि जब नींद नहीं लगेला तो चाहे ला को ध्यान कहूँ पर लगावे के, और ध्यान जब अपन मनपसंद गीत पर लगेबा तो उ सुनते सुनते नींद भी चलावेला। तो चला नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में ये अगला गीत, खास तौर पर कैथोबोन के सरिता जी के नाम और प्रभावती दादी के नाम।

0: देखते देखते हमने के समय चला हुआ था और लगभग 15 मिनट में 11 बज जाए और हमने के साथ हिये तक रहल 11 बजे तक बा और आपके मनपसंद गीत चला था अभी और सकब जा बोले 4 गो गीत चली आपके पसंद के गीत और तब तक हमके आज्ञा दा हमने के मुलाकात फिर से हुई काल फजर के हमेशा के तरह हमारी धरोहर में और जे काल नहीं ता फिर से यही प्रोग्राम में हमने भेंटाब जा आवत बीफे के ता आवत बीफे के हमके इंतज़ार रही आप लोग से फिर से बात करे के जितना फ़ोन कॉल्स आज नहीं सकली सले हुए वो सब फ़ोन कॉल फिर से लेवा बीफे के ता आपके जितना पसंद रहल सबके पूरा करे के पूरा कोशिश रहल अभी का तिर हम के आज्ञा दा धन्यवाद शुभ रात्रि नमस्ते
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: Bhojpuri Tadka Kiran Sanghi

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your 109 station.
0: Bhojpuri Tadka, Kiran Sanghi.

0: This is Radio Marches.
1: 您好。
2: Assalamualaikum. Kim Mauritius.
3: Namaskar.
4: Shudrandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
5: Ungal anaivarukkum vanakkam.
6: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
7: Sunehri par. Sunehri par Radio Mauritius ke saath.
8: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और शुरू हो रहा है आपका सुनहरे पल। तो आइए लौट चलते हैं उन खूबसूरत दिनों में जब बॉलीवुड के गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि दिल से महसूस किए जाते थे और दिल में बसा लिए जाते थे। तो अगले किस एक घंटे की सफर में आप बस हमारा साथ देते रहिए और महसूस कीजिए पुरानी यादों का जादू सिर्फ सुनहरे पल में गिनिशा के साथ।

वैसे मानो या ना मानो हर गीत एक कहानी है, हर सुर एक याद है और रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं वो अमर गीत जो आज भी दिल को छू जाते हैं और दिल में बस जाते हैं। तो चलिए मिलकर यादों के इस सफ़र में हम

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

दोस्तों, अगर आप घर पर आराम कर रहे हैं या हो सकता है किचन में अभी भी कुछ काम चल रहे हैं या सफ़र पे हैं, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने बॉलीवुड संगीत का खजाना जो खुल चुके हैं आपके और हमारे बीच में। ये है सुनहरे पल सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। तो चलिए जी, अगला नगमा कुछ ऐसे हैं जो सीधे दिल को छू जाएंगे और आपको खींच के लेके जाएंगे आपकी उन खूबसूरत यादों की तरफ जो आपने छुपा के रखा है।

दोस्तों हमेशा याद रखना कि कुछ गीत कभी पुराने नहीं होते हैं क्योंकि उनमें बसी होती हैं हमारी जिंदगी की खूबसूरत यादें। तो तैयार हो जाइए सुनहरे पल में जहां हर नगमा दिल को सुकून देता है और फिलहाल के लिए सुकून भरे गीत खासकर हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स के नाम।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: मानो या ना मानो लेकिन वो जमाना ही कुछ और था मेरी जान, वो दौर ही कुछ और था। पुराने बॉलीवुड के गाने, हाँ जी, ऐसा लगता था कि उनमें इतना प्यार बसा हुआ था कि फुट फुट के निकलता है जब भी हम उन गानों को सुनते थे। और बात यही है कि आज भी जब वो गाने हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो ऐसा लगता है कि हम दोबारा मजबूर हो जाते हैं उसी वक्त में लौट जाने के लिए। बिल्कुल जी, प्यार भरे नगमे प्यार से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। तो बस आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी यादों में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए सुनहरे पल के साथ।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए यह वक्त हो गया है गिनिशा को गुड बाय बोलने का। हम फिर मिलेंगे एक और सुनहरे पल वाले खूबसूरत शो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो
1: I like it.

0: ऑल राइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास मंडरा, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टरका,
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: है। भी तो सुनो,
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है। जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो
0: जाए,
1: कुछ ही दिन में नजरें इनकी इधर उधर
0: मंडरा,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती।
0: इंटीरियर
1: डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके, दैट्स इट।